एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:58:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजकर

जीवन में त्याग करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए उन चीज़ों को ज़रूर त्याग दें जो दुख का कारण बने। अहम का त्याग करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में दिखावा या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नींद को त्यागने से जीवन में सफलता कदम चूमती है, क्योंकि हम जब समय का सदुपयोग करते हैं तो जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करते हैं। झूठ का त्याग करने से मन में सुकून हमेशा बना रहता है। जब मन शांत है तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं पाती। निंदा को त्यागना भी श्रेष्ठतम है, क्योंकि निंदा करके हम अपने इस जन्म के कर्मों को तो खराब करते हैं, बल्कि अगले जन्म तक भी ये बोझ हमारा साथ नहीं छोड़ता। जिसने इन चीज़ों का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वतः ही प्रेम, भक्ति, दया, करुणा आ बसती है। ऐसे ही लोग परमपिता परमात्मा के बेहद करीब होते हैं। अगर परमात्मा से निकटता हमें बनानी है तो त्याग करना आना बहुत ज़रूरी है। ये हुनर सीखना बहुत आवश्यक है। चिंतन के बाद लिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जैसे घर के अंदर जली हुई अगरबत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से हमारा सारा जीवन सुगंधित हो जाता है।

कबीर तन पंछी भया, जहां मन वहां उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। अर्थात संगति का असर जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग। तो ये संग अगर हम परमात्मा के साथ बनाएं

यह देह विनाशी है, इसके द्वारा भोगे जाने वाले सुख भी अनित्य हैं, यानी वे नित अथवा सदैव रहने वाले भी नहीं। आत्मा के ध्यान द्वारा प्राप्त आनंद इतना स्थिर है जितना आत्मा स्थिर है।

हमारी वाणी से हमारे व्यवहार का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वाणी में मिठास बनाए रखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। प्रभु भक्तों का व्यवहार और वाणी दोनों ही संतुलित होती है, क्योंकि उनके जीवन में इस परिवर्तन का मूल कारण प्रभु भक्ति ही होती है।

आज की आखिरी भक्ति रचना के साथ प्रातःकालीन वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी धर्मशाला आपने ट्यून इन किया 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान का भाग 96। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, जिसमें 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। सुप्रभात कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आज विशेष के साथ साथ जानकारी साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में, रमणीक एवं पर्यटन स्थल हरिपुर धार की बात भी होगी और पर्यावरण में जानकारी साझा करेंगे उपयोगी पक्षी उल्लू के बारे में। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। समाचार पर भाजुब 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम जनवाणी सुनवाया जाएगा, जिसमें 9:18 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के बाद 9:30 से 10:00 तक जनवाणी कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे। सुबह 10:00 आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 10:30 पर हिमाचली गीत आप सुन पाएंगे। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए पेश किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर घर परिवार कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, कितनी स्वतंत्र हैं महिलाएं, इस विषय पर भी बात होगी और सामान्य ज्ञान में ग्रहों के बारे में जानकारी दी जाएगी। खान पान में जानकारी साझा करेंगे अंकुरित दालों के महत्व के बारे में। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 1:10 से 3:00 तक रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 3:10 से 5:00 तक और 5:00 समाचार बुलेटिन आपको सुनवाया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में

0: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आनंद उठाइएगा भजनों का। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में फिल्मी फ्राइडे सुनवाया जाएगा। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:06 पर सदाबहार संगीत पेश किया जाएगा। मौजा गराइंदियां कार्यक्रम में 6:30 पर जानकारी का विषय रहेगा वनों को आग से बचाएं। 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम में 7:10 पर बात होगी कृषि कार्यों में बीजों का चुनाव। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष कार्यक्रम। देशभक्ति गीत 8:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है कोई मिल गया। 9:30 पर फिल्म संगीत, रात 10:00 नई फिल्मों के गीत आप सुन पाएंगे। 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहल्लीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केंद्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कंप्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं अवैधं अनिर्दिष्टं अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनं अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च न्यायालयेन आर जी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलं आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्र श्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉक्टर शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गा तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director, East, will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials and field officers from across the country, attended the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him the opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
5: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
4: Mr. Rubio will be in India from the 23rd to the 26th of this month and will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. The Quad meeting is scheduled on the 26th of this month. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात।

हर सुबह एक नई उम्मीद, नया जोश, नया सपना, नए उद्देश्य, जिंदगी की रोज़ की भाग दौड़, और उसमें हम और आप मिलते हैं इसी फ्रिक्वेंसी पर। जी हाँ, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त आपने ट्यून इन किया है। सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ। श्रोता, हर कोई सपने देखता है कि उसका अपना प्यारा सा घर हो, आशियाना हो। मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उस मकान को घर बनाती है हमारी छोटी छोटी सी खुशियाँ, जिसमें हम मदमस्त रहते हैं। थोड़ा हो मगर संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ज़्यादा की चाह हमारी आज की खुशियाँ भी हमसे छीन लेती हैं। तो कुछ ऐसा ही गीत कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढी जा रही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये गीत, और फिर जानकारियों का पिटारा आपके संग साझा करेंगे।

जी बिल्कुल, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा सा आसमान, इसी में तो हमने खुशियाँ ढूंढनी हैं, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब जानकारी साझा करते हैं आज विशेष की। इतिहास में 22 मई के दिन बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई हैं। भारत की बछेंद्री पाल 22 मई के दिन ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंची थी, और इस कारनामे को अंजाम देने वाली वे देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म

सदस्यता से त्यागपत्र आज ही के दिन दिया। सन 1988 में भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण आज ही के दिन किया था।

सुबह के 7:22 और 35 सेकंड हुए हैं। आपने ट्यून इन किया 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुप्रभात। और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के महत्व, संरक्षण और मानवीय गतिविधियों से इनके सामने उत्पन्न खतरों के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने साल 2000 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी। ये तारीख 22 मई 1992 को जैव विविधता पर

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पाठ को अपनाने की याद में चुनी गई थी। हर वर्ष जैव विविधता दिवस के लिए एक थीम का चयन किया जाता है और इस साल 2026 के लिए थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। ये विषय जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर छोटी स्थानीय पहलों को प्रोत्साहित करता है। एक गाना सुनते हैं और उसके बाद अगली जानकारी आपके संग साझा करेंगे।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और श्रोता रमणीक और पर्यटन स्थल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हरिपुर धार के बारे में। हरिपुर धार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित एक गांव है। ये समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गहरी घाटी के ऊपर स्थित है। एक ऊंची पहाड़ी पर यह बसा है। इससे पहले दुंग भंगयानी के नाम से भी जाना जाता था। ये सिरमौर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। मई और जून के महीने में भी यहाँ तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सर्दियों में यहाँ हिमपात देखने को मिलता है। इस जगह में 3-4 होटल और गेस्ट हाउस हैं। शिमला और सिरमौर की सीमा पर एक मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं से युक्त लगभग 30 कमरे हैं। मां भंगयानी मंदिर के आसपास के गांव में कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर भी हैं। हरिपुर पहाड़ी की चोटी पर एक मूक प्रहरी की तरह स्थित एक यहां किला है, जिसका निर्माण प्रारंभिक सिरमौर राज्य के शासकों द्वारा इस पर्वत श्रृंखला पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी जुबल राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना था, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच नियमित रूप से सीमा को लेकर विवाद होते थे और एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ वो किया करते थे। ये किला वीरान पड़ा है और इसका जो हिस्सा भी रहने योग्य है उसका उपयोग वन विभाग द्वारा मुख्यालय के रूप में किया जाता है। तो जानकारियां हमारे पास और भी हैं, लेकिन एक गाना आपको सुनवाते हैं और उसके तुरंत बाद मिलते हैं जानकारियों के साथ।

सुप्रभात कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और श्रोताओं कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं जहां हर बार की तरह बात करते हैं पर्यावरण की और आज जानकारी साझा करेंगे उपयोगी पक्षी उल्लू के बारे में। आउल या उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में इसका शिकार अगर थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और उसे वहीं पर दबोच लेता है। उसके पैरों में टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाली चार उंगलियां होती हैं जिससे इसे शिकार को दबोचने में उसे विशेष सुविधा मिलती है। चूहे इसका विशेष भोजन होते हैं। उल्लू संसार के लगभग हर भाग में पाया जाता है। जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी यानी नॉक्टर्नल बर्ड्स कहा जाता है। ऐसा कथन है कि बड़ी आंखें बुद्धिमान होने की निशानी मानी जाती है और इसलिए उल्लू को भी बुद्धिमान पक्षी कहा जाता है। प्राचीन यूनानियों में बुद्धि की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वह उल्लू का रूप धरकर पृथ्वी पर आई थी। भारतीय पौराणिक कथाओं कहानियों में भी उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू धन और समृद्धि लाता है।

अभी आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं और श्रोताओ, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आप सुनते हैं गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के अंश। स्वर संजीव अरोड़ा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 16वां अध्याय, को जाने कल की खबर नहीं इस युग में पल की, समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के खत्म होने पर मेरे लिए प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण ना रहा, मैं डर बन गया। वहां पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दें, यह संभव ना था। उन्होंने मेरे निमित्त से सिडनहैम में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया। पूरा दिन वहीं बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से अपरिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में से किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर न थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा, इन बातों को हम क्या जाने, व्यापार पर कोई संकट आवे तो हमें उसका पता चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भाव ताल की बातें ही समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले, हमारे आंख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहां पैदा हुए और अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहां हैं, वे क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ रख कर कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वे बेचारे इसमें क्या समझें? वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और सब पादरी गोरे हैं जो सरकार के अधीन हैं। मेरी आंखें खुल गई। इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है? वे ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेशी बन गए? किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने उपर्युक्त विचारों को प्रकट नहीं किया। मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर यह कानून इसी तरह पास हो गया तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है। इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। हो सकती है, परंतु मैं आपको फ्रेंचाइज, इस तरह अंग्रेजी भाषा के कई शब्द अपना रूप बदल कर देशवासियों में रूढ़ हो गए थे, मताधिकार कहो तो कोई समझता ही नहीं था, का इतिहास सुनाऊं? हम तो इसमें कुछ भी नहीं समझते, पर आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे बड़े वकील मिस्टर एस्कम्ब हैं। वे जबरदस्त लड़वैया हैं। उनके और यहाँ के जेटी इंजीनियर के बीच खासी लड़ाई चलती है। मिस्टर एस्कम्ब के धारा सभा में जाने में यह लड़ाई बाधक होती है। उन्होंने हमें अपनी स्थिति का भान कराया। उनके कहने से हमने अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाए और अपने सब मत मिस्टर एस्कम्ब को दिए।
अब आप देखेंगे कि हमने अपने इन मतों का मूल्य आपकी तरह क्यों नहीं आका, लेकिन अब हम आपकी बात समझ सकते हैं। अच्छा, तो कहिए आप हमें क्या सलाह देते हैं? दूसरे मेहमान इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर से ना जाएं और एक आध महीना रुक जाएं, तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, यह बात सच है अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। अब्दुल्ला सेठ उस्ताद ठहरे। उन्होंने कहा, अब उन्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है, पर आप जो कहते हैं सो ठीक है, हम सब उन्हें रोक लें, पर ये तो बैरिस्टर हैं, इनकी फीस का क्या होगा? मैं दुखी हुआ और बात काट कर बोला, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीस की बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवा की फीस कैसी? मैं ठहरूं तो एक सेवक के रूप में ही ठहर सकता हूं। मैं इन सब भाइयों को ठीक से पहचानता नहीं, पर आपको भरोसा हो कि ये सब मेहनत करेंगे तो मैं एक महीना रुक जाने के लिए तैयार हूं। यह सच है कि आपको मुझे कुछ भी नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकते। हमें तार करने होंगे, कुछ साहित्य छापना होगा, जहां तहां जाना होगा, उसका गाड़ी किराया लगेगा, संभव है हमें स्थानीय वकीलों की भी सलाह लेनी पड़े। मैं यहाँ के कानूनों से परिचित नहीं हूं, मुझे कानून की पुस्तकें देखनी होंगी। इसके सिवा ऐसे काम एक हाथ से नहीं होते, बहुतों को उसमें जुटना चाहिए। बहुत सी आवाजें एक साथ सुनाई पड़ी, खुदा की मेहरबानी है, पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, आप रहना कबूल कर लें तो बस है, सभा सभा न रही। उसने कार्यकारिणी समिति का रूप ले लिया। मैंने सलाह दी कि भोजन से जल्दी निबट कर घर पहुंचना चाहिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली, मताधिकार कितनों को प्राप्त है सो जान लिया, और मैंने एक महीना रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है अगला प्रसारण, आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीप दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
10: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion,

हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक और लोकप्रिय गानों में से एक गाना भी आप सुन रहे थे और ये सदाबहार गाना 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन का है। ये गीत कैबरे शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है और इस गीत से जुड़ी और बातों की बात हम करें तो सदाबहार गीत को अपनी जादुई आवाज़ से लेजेंडरी गायिका आशा भोंसले ने सजाया था शानदार संगीत कल्याण जी आनंद जी का और गीतकार इंदिवर।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
8: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
7: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
8: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
7: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
9: सुबह के 8:44 और 42 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आशा फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है। मोहम्मद रफी की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

डिस्को डांसर फिल्म के संगीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, हाजिर हैं कार्यक्रम जनवाणी के साथ।

जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के चलते हमारे केंद्र से लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जा रहे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज जनवाणी के इस अंक में हम आपका मनोरंजन करेंगे कुछ नए पुराने गीतों के साथ। आज के जनवाणी कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा।

आंखें हमारे शरीर का वो हिस्सा होती हैं जिससे हम इस खूबसूरत से संसार को देखते हैं। तो आज का जनवाणी कार्यक्रम इसी शीर्षक के अंतर्गत केंद्रित रहेगा। तो चलिए सुनते हैं आंखें शीर्षक से कुछ चुनिंदा नगमें।

9:13 आपने ट्यून इन किया 103.4 मेगाहर्ट्ज़ जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा मुझसे। Oh God, one more.

जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 9:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और हम लौटेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद, तो रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का बताया हनन। प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बिलासपुर जिला में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। उन्होंने बिजली उत्पादन मशीनरी का अवलोकन किया और इंजीनियरिंग व रखरखाव कर्मचारियों की तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पण की सराहना की। राज्यपाल ने जल संरक्षण और इस कीमती प्राकृतिक संसाधन के उत्तरदायी प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसकी बेहद आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इस बांध की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
3: ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं, सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
2: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिमला जिला में रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 9 वार्डों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: विशेष बात यह है कि नगर परिषद रोहडू के सभी मतदान केंद्रों का संचालन इस बार पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश व देश स्तर पर एक अनूठी व प्रेरणादायी पहल है। इसके लिए सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 14 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है, जिनमें 80 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये महिला कर्मचारी केवल मतदान प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मतगणना की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस वर्ष दिवस का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है, जो व्यापक वैश्विक लक्ष्यों से स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक कार्रवाई की ओर बदलाव को दर्शाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पर कहा है कि जैव विविधता की रक्षा करना न केवल एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, बल्कि समुदायों, संस्थानों और सरकारों द्वारा साझा की जाने वाली एक स्थानीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारत अपने स्थानीय संरक्षण के नायकों को सम्मानित करता है, जो अक्सर गुमनाम नायक होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण में वृद्धि के बीच भारत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से प्रकृति अनुकूल शहरों को बढ़ावा दे रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, जो युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन और उनका शोषण है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक मंगलवार को इस रूट पर उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं थी। नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। पहले इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, ऐसे में रविवार को भी दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर विमान सेवा संचालित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा देश में सर्वाइकल कैंसर को रोकने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका निशुल्क लगाया जा रहा है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है।
5: स्वास्थ्य विभाग चंबा को पहले चरण में 4500 बेटियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था और ये लक्ष्य समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। रोजाना ये वैक्सीन फील्ड स्तर पर और अस्पतालों में बेटियों को लगाई जा रही है। इस टीकाकरण अभियान के तहत अभिभावकों को अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन UWIN पोर्टल पर करना होगा, जिससे टीकाकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये टीका स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को समय रहते ये टीका लगवाएं, ताकि भविष्य में इस जानलेवा बीमारी से बचाव संभव हो सके। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
2: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के 6 जिलों में लू का प्रकोप, आज और कल कई क्षेत्रों में बारिश व अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, उफ ये गर्मी, 5 जिलों में लू चलने से छूटे पसीने। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, तपते हिमाचल पर आज गिरेंगी फुहारें। दैनिक जागरण की एक खबर है, पंचायत चुनाव से पहले बिलासपुर में 50 बैलेट पेपर गायब। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, बद्दी नालागढ़ रोड निर्माण में हो रही देरी के बारे में जवाब दें NHAI। देश के बेस्ट 100 डीएम में हिमाचल के 5 डीसी को मिली जगह, पंजाब केसरी की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन बताया। और प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
6: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे।
7: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार, 30 मिनट हुए हैं, लीजिए सुनिए जनवाणी कार्यक्रम के बाकी गीत। तलब करे तो आंखें भी इनको दे दूं मैं, मगर ये लोग इन आंखों के ख्वाब भी मांगते हैं।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

जनवाणी कार्यक्रम में फिल्म संगीत आज श्रोता सुन रहे हैं और एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज का शीर्षक है आंखें। आंखों ने आंखों से क्या कहा ये तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ गुस्ताखियां अक्सर हो जाया करती हैं इन आंखों से।

0: के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक लड़की थी दीवानी सी।
1: कहते हैं हमें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, किसी की कही सुनी बातों पर यकीन हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारा मन जिस बात पर यकीन करे वही सच है, लेकिन इसके लिए अपनी आंखें खुली रखना बेहद जरूरी है।
0: कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हमारी अदाएं भाव भंगिमा भी आंखों से शुरू होती है। दुनिया की खूबसूरती को तो हम इन आंखों से महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन दिल की बातों को भी ये आंखें आसानी से समझ जाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनवाणी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी का स्वर्णिम काल 90 साल। ये विशेष कार्यक्रम अब आप सुनेंगे।

आवाज से हमारा सदियों का नाता रहा है। कुछ ध्वनियां हमें जगाती हैं, कुछ जीना सिखाती हैं, तो कुछ ध्वनियां हमें कहीं दूर ले जाती हैं।

वक्त गुजरने के साथ साथ इन ध्वनियों में भी विस्तार हुआ है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। 20वीं शताब्दी में जनमानस ने तकनीक में एक बड़ा बदलाव देखा है और ये बदलाव आज भी जारी है। एक बड़ा बदलाव संचार के क्षेत्र में भी हुआ, जब पहली बार हवा में ये ध्वनि तरंगें गुंजायमान हुईं।

जी, वो ध्वनि है जो घर से दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपनेपन का एहसास दिलाती है। इन ध्वनियों को आम जनमानस तक बिना किसी तार के पहुंचाने का प्रयास बहुत पहले से आरंभ हो चुका था। ये प्रयास था युवा वैज्ञानिक मार्कोनी का। बिना तार के ध्वनि तरंगों का ये सफर था इंग्लैंड से अमेरिका के बीच। ये पहला व्यक्तिगत रेडियो संदेश था, या यूं कहिए कि यहीं से रेडियो अस्तित्व में आया। इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और कनाडा के वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फिसेंडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की।

उन्होंने वायलिन बजाया, गीत गाया और बाइबिल के कुछ अंश पढ़े, जिसे अटलांटिक महासागर में जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने सुना। ये संगीत सुन वे झूम उठे।

फिर आया वर्ष 1922, जब संचार की इस क्रांति का पदार्पण भारत में हुआ। भारतवासियों के लिए ये एक आश्चर्यजनक पल था। ये पल सार्थक तब हुआ जब जन जन तक देश विदेश की खबरें पलों में पहुंचने लगी। संचार की इस क्रांति ने दूरियों को मिटा दिया। हुआ यूं कि जून 1923 में ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लब्स के साथ रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। 23 जुलाई 1927 को एक समझौते के अनुसार निजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया। ये थे बॉम्बे रेडियो स्टेशन, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, और कलकत्ता स्टेशन, जिसका शुभारंभ 26 अगस्त 1927 को हुआ। बाद में सरकार ने प्रसारण सुविधाओं का अधिग्रहण कर लिया और अप्रैल 1930 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ये सेवा आरंभ में प्रायोगिक आधार पर थी, जिसे बाद में स्थायी कर दिया गया। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जब इसे अखिल भारतीय रेडियो का रूप दे दिया गया। वर्ष था 1936 और तारीख थी 8 जून। ये तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। देश की आजादी के वक्त भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन थे। समय बदलता गया और इनकी संख्या बढ़ती चली गई, जिनमें भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक यानी ऑल इंडिया रेडियो, निजी रेडियो स्टेशंस, सामुदायिक रेडियो स्टेशंस शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो को वर्ष 1956 से आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1977 में आकाशवाणी में एक नया अध्याय जुड़ गया। शुरुआत हुई FM की। इससे पहले आकाशवाणी के कार्यक्रमों को मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के माध्यम से सुना जाता था। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आने से रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता में 4 चांद लग गए।

0: आज ऑल इंडिया रेडियो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, साथ ही प्रसारित भाषाओं बोलियों की संख्या सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के व्यापक दायरे के मामले में विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। आकाशवाणी धर्मशाला इसी माला का एक मोती है जो 23 फरवरी 1994 से अस्तित्व में आया और आकाशवाणी धर्मशाला से गूंज उठी पहली आवाज।
1: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हाजिर है आपका दोस्त सर्वप्रिय निर्मोही।
0: ये महज एक उद्घोषणा नहीं थी। धर्मशाला के स्थानीय निवासियों और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले रेडियो प्रेमियों के लिए एक वरदान था। स्थानीय प्रतिभाओं के सपनों को पंख देने वाला एक ऐसा केंद्र जो जन जन की आवाज बन गया।
2: मेरा नाम इंदु है और मैं गांव सोड़ा की निवासी हूँ। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये मैं रेडियो में बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। जब हम छोटे थे रेडियो मेरे पापा जी लेके आए थे, तो हम उस टाइम से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। जो हमें रेडियो सुनना बहुत पसंद है। जब हम मैं स्कूल जाती थी तो गीतांजलि आता था आपका कार्यक्रम 8:30 बजे, तो वो मैं सारा सुन के जाती थी। तभी से हमें ये मतलब रेडियो के प्रति मैं मतलब ज़्यादा सुनने लगी हूँ। और उसके बाद मैं और भी ज़्यादा प्रोग्राम सुनती हूँ रेडियो के, जैसे दिन में आता था महिला जगत वगैरह। अब तो हमारी मैरिज हो चुकी है, तब भी मैं सुनती हूँ रेडियो। मैं घर का काम करती हूँ तब मैं रेडियो ऑन कर देती हूँ, तो अब मेरा काम आसानी से हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है हमारा। और रेडियो हमें इसके अलावा और भी अधिक जानकारी देता है खेती के बारे में, महिलाओं के लिए भी जानकारी देता है।
3: आकाशवाणी धर्मशाला के सभी श्रोताओं को और जितने भी आकाशवाणी की परिवार है, जितने भी हमारे उद्घोषक है उद्घोषिका है बेटे बेटियां हैं, उनको सभी को मेरी तरफ से आकाशवाणी के 90 साल पे की बहुत बहुत मुबारक। देखिए रेडियो हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है कि इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता। हम अपना कार्य भी करते रहते हैं और हमारे को कितनी कितनी बड़ी बड़ी जानकारियां मिलती है, खेत के बारे में, शिक्षा के बारे में, कृषि के बारे में, मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी हलचल हो उसके बारे में मौसम की जानकारी, और हर तरीके से रेडियो जो है हमको जानकारी देते रहते हैं और इसके साथ साथ हमारा मनोरंजन भी होता रहता है।
4: मेरा नाम कौशली है, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है और कई बार काफी काम होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पार्लर में रेडियो हर वक्त ऑन रहता है, इस वजह से मुझे काम करके बिल्कुल थकान नहीं होती और मजे मजे में मैं काम भी पूरा कर लेती हूँ। मेरा रेडियो तो मेरे सभी कस्टमर्स में भी फेमस है। कुछ कहते हैं कि आप इस जमाने में भी रेडियो सुनते हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है और मेरे रेडियो के प्यार को समझते भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
5: सर मेरा नाम पंजाब सिंह है और मैं गांव कछेड़ा तहसील जसिमपुर जिला कांगड़ा का रहने वाला हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि रेडियो प्रसारण जो है वो अपनी सेवाएं देते हुए 90 वर्ष बीत चुके हैं, तो इसके लिए मैं आपको समस्त आपके जो कर्मचारी भाई हैं उनको सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। रेडियो एक ऐसा साधन है, रेडियो से हमें कई तरह की जानकारी मिलती है, जैसे खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिलती है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें पहाड़ी गाने सुनने का आनंद आता है। जो आप अलग अलग अपने कार्यक्रमों में पहाड़ी गाने सुनाते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपना कोई व्यक्ति निजी काम कर रहा हो तो साथ में पहाड़ी गाना लग पड़े तो जो पहाड़ी जब बोलते सोने का सुहागा, एक अच्छा उसमें हो जाता है और उस कार्य को करने का आनंद भी आता है। और मुझे याद है कि जब रेडियो मैं नए नए सुनना शुरू किया तब रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था। इसके लिए पहले रेडियो का लाइसेंस बनवाना पड़ता था, तब आप रेडियो अपने पास रखते थे क्योंकि और कोई साधन नहीं थी इंटरटेनमेंट के, जिसके कोई साधन नहीं थे, मात्र रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिससे कि हमें इसमें अपने समस्त देश प्रदेश की जानकारी मिलती थी और इसमें सभी प्रकार के प्रोग्रामों का हमें आनंद मिलता था। धन्यवाद सर।
6: मैं रतन चंद ज्वाला जी जिला कांगड़ा से आकाशवाणी का एक श्रोता हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि आकाशवाणी 8 जून 2026 को अपनी सेवाओं के 90 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाने जा रहा है। 1997 में प्रसार भारती के गठन के बाद आकाशवाणी नई बुलंदियाँ छूता आ रहा है। आज देश के 97% भूभाग और 99% लोगों तक आकाशवाणी की पहुँच है। 23 भाषाओं और 146 स्थानीय बोलियों में आकाशवाणी अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहा है। आकाशवाणी पर श्रोताओं का भरोसा अटूट बना हुआ है। इस पावन अवसर पर मैं आकाशवाणी के सभी विद्वान और विदुषी वकर्मठ आरजे अधिकारीगण टेक्निकल टीम तथा सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ और उनके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।
0: आकाशवाणी धर्मशाला ने एक ओर जहां लोक संगीत से जुड़े कलाकारों के सपनों को नई उड़ान दी।

0: प्रदान दिया, बिखरी बिखरी भाषाओं को एक सूत्र में मान दिया। चौपालों की मिट्टी महकी इसकी मधुर पुकारों से, सीमा पर वीर ने साहस पाया इसकी अमर गुहारों से। भोर हुई तो भक्ति सुधा बन हर आंगन में ढल जाता, खेतों की पगडंडी पर भी मौसम बन चल जाता। नन्हे बच्चे की किलकारी में ये मीठी लोरी बनता, कवि मन की गहरी पीड़ा में सावन बन बरसता। आज भी याद है रेडियो और वो धीमी सी आवाज़, दादाजी की चलती उंगली नौब पर सजता था साज। घूमती सुई का हर कांटा बीते पल दोहराता था, बिन तारों का छोटा डिब्बा पूरा जग दिखलाता था। समाचारों की विश्वसनीयता, संस्कृति का गौरव गान, दिल्ली से पूर्वोत्तर तक गूंज उठा तब हिंदुस्तान। कांगड़ा की हरित वादियों से सागर की लहरों तक, लोक धुनों को अमर किया जन जन के हर घर तक। सन 36 से चली यात्रा, साधारण कोई प्रयास नहीं, हर भारतीय के अंतर मन का जीवित सा एहसास यहीं। आज भी वह सिग्नेचर ट्यून जब धीरे धीरे बजती है, भीगी भीगी बचपन वाली संध्या फिर से सजती है। 9 दशकों का ये संगम केवल स्वर का मेल नहीं, जनमन का अटूट भरोसा ये है कोई खेल नहीं। आकाशवाणी केवल स्वर नहीं, भारत की धड़कन है, जन जन की अपनी वाणी, जनमन का समर्पण है, जनमन का समर्पण है।
1: रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को मेरा यानी डॉक्टर अदिति गुलेरी का धर्मशाला से सादर नमस्कार। रेडियो से नाता आज का नहीं अपितु बचपन से जुड़ा हुआ एक अटूट नाता है। बचपन में दादाजी का रेडियो, फिर पापा का रेडियो घर में खूब रौनक लगाता था, और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो रेडियो ने और अपनी तरफ आकर्षित किया। रेडियो में गाने सुनना, बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब छोटे छोटे होते थे तो ये समझ नहीं आता था कि रेडियो के अंदर से अलग अलग आवाजें कैसे आती हैं, कौन इसके अंदर बैठा है जो बोल रहा है। इस चक्कर में न जाने कितने ही बार रेडियो के बटनों को घुमा घुमा कर, उस एंटीने को हिला हिला कर हमने तोड़ दिया था। पापा से रेडियो के खराब होने पर अक्सर डांट भी खाई है, और जब बड़ी हुई तब पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ तो पापा ने मुझे रेडियो ही उपहार में दिया था, और उस रेडियो को खूब सुना। आज भी अगर रेडियो ना सुने तो लगता है कि दिन में कुछ कमी सी है। रेडियो जब गाड़ी में बजता है तो वो सबसे अधिक आनंद देता है। रेडियो पर विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हृदय को आंदोलित करती हैं, वैचारिक मानस पटल पर रेडियो अपनी छाप छोड़ता है।
2: आइए मिलते हैं उन महान हस्तियों से जिन्होंने आकाशवाणी धर्मशाला में अपनी सेवाएं दी और आकाशवाणी धर्मशाला को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया।
3: हाजिर है आपका दोस्त सर्वप्रिय निर्मोही। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरे लिए ये केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति और जनमानस से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र का शुभारंभ अपनी पहली उद्घोषणा के साथ 23 फरवरी 1994 को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे खूबसूरत क्षण मेरे जीवन की अमूल्य स्मृतियों में शामिल हैं। समय के साथ जरा सुनिए हेलो धर्मशाला और जनाक्रोश जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे आप सभी श्रोताओं के और करीब आने का अवसर मिला। आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, प्यार, मोहब्बत और आत्मीयता हमेशा मेरी प्रेरणा बने रहे। जनाक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस के बीच पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुलझाना मुझे आत्म शांति और आत्मबल से परिपूर्ण करता रहा। रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये आवाज के माध्यम से दिलों को जोड़ता है। आकाशवाणी ने न केवल सूचनाएं दी बल्कि समाज की संवेदनाओं, संस्कृति और लोक जीवन को भी स्वर दिया। आकाशवाणी आज भी जनमानस से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है और आने वाले समय में भी अपनी विश्वसनीयता एवं आत्मीयता के साथ लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखेगा। मनोरंजन, ज्ञान और सूचनाओं के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी हमेशा श्रोताओं को जागरूक, प्रेरित और समाज

0: जोड़े रखने का कार्य करती रहेगी। इसकी आवाज केवल प्रसारण नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और संस्कृति का सशक्त प्रतिबिंब है। 90 वर्षों की इस यात्रा पर मैं अपने सभी श्रोताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रेम और स्नेह ने मुझे हमेशा ऊर्जा और अपनापन दिया। आपका ये साथ यूं ही बना रहे, यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।
1: आप हैं सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक श्री एम आर चांदला।
2: आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी के 500 से ज्यादा केंद्रों से प्रसारण के इस उत्सव की गूंज खुशनुमा कार्यक्रमों और संदेशों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी केंद्रों पर वाकाथॉन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो इस 90 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव को और भी आकर्षित बना रहे हैं। एक लंबे अरसे तक प्रसारण का वन साइडेड फ्लो रहा। प्रसारक, अनाउंसर या कंपेयर की प्रेजेंटेशन श्रोता केवल सुन सकते थे, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, किंतु पिछले 25-30 साल के प्रसारण के क्रांतिकारी बदलाव से श्रोता और स्टूडियो में बैठा प्रसारक दोनों इकट्ठे विशेष कार्यक्रमों में एट ए टाइम ऑन एयर होते हैं। प्रसारण में इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। मुझे लंबी अवधि तक आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर सेवा करने के दौरान सन 2004 से सन 2009 तक आकाशवाणी धर्मशाला में प्रोग्राम हेड के तौर पर सेवा करने का अवसर मिला। इन 5 वर्षों में मैंने अनुभव किया कि देवभूमि हिमाचल में कला और प्राचीन विरासत और पर्यटन की कोई कमी नहीं है, जो प्रसारण के लिए अति आवश्यक होती है। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आकाशवाणी में इंजीनियरिंग विंग का बराबर का सहयोग और सपोर्ट होती है। उनके सहयोग और सपोर्ट के बिना इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचने नामुमकिन है। इसलिए मैं आकाशवाणी धर्मशाला के इंजीनियर विंग का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं एक बार फिर आकाशवाणी परिवार और श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूँ। जय हिंद।
1: इस वर्ष यानी वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर पूर्ण कर रहा है। ये वो सशक्त माध्यम है जिसके विषय में एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मैं रेडियो में एक अद्भुत शक्ति देखता हूँ। ये वो जरिया है जिसने देश के माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुँचाया।
3: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
1: वास्तव में एक कार्यक्रम का निर्माण और प्रसारण करने में बहुत से लोगों का सहयोग रहता है। आकाशवाणी के अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के अथक प्रयासों से आज आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के कार्यक्रमों को सुनना इतना सुलभ हो गया है कि आज देश विदेश में भी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्यक्रमों को सुना जा सकता है।
4: आकाशवाणी धर्मशाला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में काफी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सभी श्रोताओं को इस संदर्भ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मुख्तियार सिंह, सहायक निदेशक आकाशवाणी धर्मशाला, सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि आकाशवाणी धर्मशाला और अन्य आकाशवाणी केंद्रों को सुनें और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और इस संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आज के इस युग में, जो कि डिजिटल युग है, हमारे कार्यक्रमों में बनाने में हमारे तकनीक में बहुत तरक्की हुई है। इससे पहले हम लोगों को बहुत समय भी लगता था और पुराना उपकरण इक्विपमेंट होते थे जिसमें कि काफ़ी समय के साथ साथ काफ़ी मेहनत भी लगती थी। अभी नए युग में हमारे पास नए डिजिटल कंसोल हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होती है और ट्रांसमीटर भी हमारे उन्नत किस्म के हैं। इसके अलावा सभी श्रोता हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ ऑन AIR पे भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से कहीं भी ये सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी श्रोताओं को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी लंबे अरसे से विभिन्न रुचिपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं के सुख दुख का साथी रहा है। संकट की घड़ियां हो या खुशी के लम्हे, आकाशवाणी ने कभी एक मार्गदर्शक तो कभी एक मित्र की तरह एक सच्चे साथी के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का ध्येय लेकर आगे भी आकाशवाणी जिंदगी के इस सफर में आपका हम सफर रहेगा। ये ध्वनियां यूं ही अनंत काल तक गुंजायमान रहेंगी। आलेख एवं वाचन स्वर संजीव कुमार, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
5: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का स्वर्णिम काल 90 साल, ये विशेष कार्यक्रम।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीत व लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोक गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे आकाशवाणी धर्मशाला से हिमाचली गीत। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
1: ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 66 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं। सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिमला जिला में रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 9 वार्डों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे तक 21.7% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: विशेष बात यह है कि नगर परिषद रोहडू के सभी मतदान केंद्रों का संचालन इस बार पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश व देश स्तर पर एक अनूठी व प्रेरणादायी पहल है। इसके लिए सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 14 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है, जिनमें 80 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये महिला कर्मचारी केवल मतदान प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मतगणना की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों को हाईजैक करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिली भारी सफलता से कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है और अब चुनावों के नियम में बदलाव कर जनादेश को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में मतदान करवाने का आरोप भी लगाया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, जो युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन और उनका शोषण है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से जारी एक शेड्यूल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक मंगलवार को इस रूट पर उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं थी। नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। पहले इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, ऐसे में रविवार को भी दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर विमान सेवा संचालित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। पहला देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं LOC कारगिल से।

अभी आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू फिल्म से।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं अंतिम देशभक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आ जाओ, आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उन्हें दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
5: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
5: हाँ,
4: ये देखो
5: देखो, देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो,
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
9: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
10: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और

सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और हाजिर हैं हम फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ। जी हाँ सनी को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए साजन फिल्म का ये दो गाना, संगीत नदीम श्रवण का।

दोपहर के 12:10 और 37 सेकेंड हुए हैं। आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। सड़क फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर के युगल स्वरों में, संगीत भूषण दुआ का।

0: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत अभी आपने सुना। सैनिक साथियों, ये फिल्म थी दिल है के मानता नहीं। अब लीजिए सुनिए सनम बेवफा इस फिल्म से ये गीत। महेश किशोर का संगीत, गायक कलाकार विपिन सचदेवा।
1: रुक जा, ओ हरे दुपट्टे वाली

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सखियों का कार्यक्रम घर परिवार।

कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को, सखियों को, आपकी अपनी सखी सुमन की प्यार भरी नमस्ते। सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सखियों, हाजिर हो गई हूँ आज के कार्यक्रम में मैं यानी सुमन, ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत लेकर। गीत संगीत भी आपको सुनवाएंगे, उससे पहले करते हैं आज की जानकारियां आपके साथ साझा। तो सखियों, आज हम बात करेंगे जैव विविधता दिवस के बारे में। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता से है, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और उनके द्वारा निर्मित परिस्थिति तंत्र शामिल है। इस दिन को सखियों, इतिहास की अगर हम बात करें और थोड़ा सा इतिहास की ओर रुख करें, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार 1993 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। प्रकृति के संतुलन और जीवन को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे हर साल मनाए जाने लगा है। इस दिन को मनाने का लक्ष्य मानव कल्याण और पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे तथा जानवरों के संरक्षण के प्रति हम लोगों को यानी इंसान को जागरूक करना है। सभी परिस्थिति संतुलन की अगर हम बात करें, तो जलवायु स्थिरता, जलवायु संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जैव विविधता की भूमिका को उजागर करना है। ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि प्रकृति संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित भी रखा जा सके। तो सखियो, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सभी गीत और विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस लौटते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आपके साथ करनी हैं। तो सखियों, जानकारी में हम बात कर रहे थे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने का सबसे मुख्य आधार है। इसे बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। छोटी छोटी बातों को जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे जैव विविधता वास्तव में है क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवों की विविधता है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, मानव जीवन का समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सखियों, हमें भी कुछ समय प्रकृति के साथ निकालना चाहिए। कई युगों से मानव यानी हम लोग, इंसान समाज के जीवन प्रणाली को चला रही प्रकृति को आज के समय में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रकृति ही हमें ताज़ी हवा, भोजन, पानी, दवा, अन्य संसाधन प्रदान करती है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमें देती हैं। फिर भी जाने अनजाने हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा देते हैं, जिसका बड़ा कारण प्रदूषण है और बिगड़ता जलवायु है। पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हम सभी को जागरूक होना चाहिए। इसके महत्व पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैव विविधता की कमी होने से प्राकृतिक आपदा और बाढ़, सूखा, तूफान आदि आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जैव विविधता संरक्षण जो है सखियों, बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हमें जागरूक होना है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये तो थी सके हमारी बातचीत जैव विविधता पर। अब थोड़ी सी बात हम ग्रहों की कर लेते हैं। ग्रह अंतरिक्ष में स्थित एक खगोलीय पिंड है जो तारों की परिक्रमा करता है, और किसी खगोलीय पिंड को ग्रह बनाने के लिए तीन मुख्य वर्गीकरण हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 चट्टानी और 4 गैसीय विशाल ग्रह हैं। ये ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सके ग्रहों के प्रकार की बात करें तो इसमें चट्टानी ग्रह, गैसीय ग्रह या गैसीय विशाल ग्रह, बोने ग्रह और बर्फीले विशाल ग्रह शामिल है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। विशाल तारे के इतने करीब होने के बावजूद बुध ग्रह की सतह पर बर्फ मौजूद रहती है, और जानकारों का यानी विज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ सतह पर मौजूद उन गड्ढों में पाई जाती है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रहों में से दूसरा होने के बावजूद शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण ग्रहों पर मौजूद ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसके तहत सूर्य की रोशनी वायुमंडल की मोटी परत के नीचे फंसी रहती है। पृथ्वी सखियों वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा घर है। दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे सौर मंडल का एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका आकार गोलाकार जैसा है और पृथ्वी की सतह पर 70% पानी है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले संगमरमर की तरह दिखाई भी देता है। जी हाँ, सभी सखियों ने देखा होगा कि पानी को जब हम देखते हैं तो पानी इसी तरह से हमें दिखाई देता है। तो सखियों, ये तो थी बातचीत हमारी ग्रहों के बारे में। अब थोड़ा सा अपनी बातचीत को देते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में आपने सुना इस गीत को। इस गीत के बाद फिर से कार्यक्रम में वापस आते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं नारी की स्वतंत्रता के बारे में। नारी की स्वतंत्रता की जानकारी की सखियों बात करें तो पहले के समय में महिलाओं की सखियों की जो दशा थी हमसे छुपी नहीं है। उस समय हमारी महिला बहनों की स्थिति काफ़ी दयनीय हुआ करती थी। उन्हें केवल चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। घर के किसी ज़रूरी फैसले पर उनकी राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था। घर के जब भी कोई ज़रूरी फैसले लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं हमारी महिला बहनें डरी सहमी सी किसी कोने में खड़ी रहती थी। फिर थोड़ा सा बदलाव हमारी महिला बहनों की स्थिति में आया, यानी हमारी ज़िंदगी में आया और शिक्षा ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें हुआ, अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्य का पता चला। और आज की नारी की बात करें तो आज की नारी शिक्षित है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। खुद तो शिक्षित है, औरों को शिक्षित करने में भी अपना योगदान दे रही है। बच्चों को पढ़ाती है और भी घरेलू जिम्मेदारियां निभाती है। कहते हैं जब एक नारी पढ़ती है तो पूरे समाज को पढ़ाती है। और आज की नारी पढ़ी लिख कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, काफ़ी ऊंचे मुकाम पर आसीन भी है। डॉक्टरी लाइन, टीचर लाइन, आर्मी, पुलिस और भी कई ऐसे पद हैं जहां पर हमारी महिला बहनें कार्य कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमें भी अपनी उन महिला बहनों से शिक्षा लेकर जीवन में आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है ताकि हमारे देश को, समाज को, हमारे घर वालों को हम पर गर्व हो सके। तो सखियों, घड़ी की सुइयां जो है हमें इशारा कर रही है कि हमें घर परिवार के किचन में जाना चाहिए। तो ये जल्दी से चलते हैं घर परिवार के किचन में। अरे यहाँ तो बहुत सारा अंकुरित अनाज दिख रहा है, लग रहा है हमारी सखियाँ आज यही कुछ बनाने वाली हैं। तो चलिए हम भी यही बना लेते हैं और थोड़ा सा अंकुरित अनाज के महत्व की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं कि कितने ज़रूरी और कितने फ़ायदेमंद ये हमारे लिए रहते हैं। अंकुरित अनाज जो हमारे हेल्थ कॉन्शियस सखियां हैं, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं, चाहती हैं कि फिट और फाइन रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद लें, तो वो थोड़ा सा अपने जीवन में अंकुरित अनाज को महत्व देती हैं। अंकुरित अनाज देखने में छोटे छोटे खाद्य पदार्थ लगते हैं लेकिन गुणों में ये कई गुना ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। ये विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्वों से काफ़ी भरपूर होते हैं। इसके साथ ये विटामिन ए, सी, ई और खनिज से भरपूर होते हैं। साथ ही साथ फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाए जाते हैं। सखी, अंकुरित अनाज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। इसके साथ पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद अंकुरित अनाज में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने वज़न जो है नियंत्रित करना है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वज़न की सखी बात कर रहे हैं तो मुझे ध्यान आ गया कि आजकल हमारी बहुत सारी बहनें जो है वज़न को नियंत्रित करने में लगी रहती हैं। योग, जिम, एक्सरसाइज, डांस क्लासेस या अपने खान पान का ध्यान रखती हैं। और बात भी सही है, होना भी ऐसा चाहिए क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि व्यस्त जीवन शैली में से हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। और जब एक बार शरीर में मोटापा आ गया तो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। जब हम इस तरह से योग, एक्सरसाइज, जिम या कुछ भी अपनाती हैं तो कहीं ना कहीं होने वाले रोगों पर नियंत्रण भी पा लेती हैं। तो इसलिए ज़रूर अपने जीवन में अपना खुद के लिए समय निकालें, खुद से प्यार करें और फिर देखिए जीवन कितना अच्छा, कितना हसीन लगता है। तो देखिए सखियों, हमारी बातें कहाँ से कहाँ शुरू हो गई और कहाँ पहुँच गई। जब सखियाँ हमारे साथ जुड़ती हैं या मिलती हैं तो मन करता है कि ढेर सारी बातें उनके साथ कर ली जाए, उन्हें छोड़ा ही ना जाए। मगर क्या करें सखियों, आपसे विदा भी हमें लेनी होती है। तो विदा लेने से पहले थोड़ी सी जानकारियाँ और आपके साथ साझा कर लेते हैं। अंकुरित अनाज जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारा शरीर प्रकृति रूप से संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अंकुरित अनाज में सूजन रोधी गुण भी होते हैं जो पुराने सृजन को कम करने में मदद करते हैं, सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अंकुरित अनाज हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमें कई पोषक तत्वों से और बीमारी पोषक तत्व प्रदान करता है और कई बीमारियों से बचाता है। ये पोषक तत्वों की खान इसे कह सकते हैं। और अंकुरित अनाज में नींबू का रस और नमक, प्याज, टमाटर डालकर इसे खाया जा सकता है। हम इसे कुछ मिनट भाप में पकाकर भी खा सकते हैं। ये पोषक तत्व सुरक्षित इससे रहते हैं और पाचन जो है आसान हो जाता है। तो ये तो थी सखियों हमारी बातचीत आपके साथ। अपनी बातचीत के साथ साथ चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी। तो आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

सखियों, इस प्यारे से गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है विकास पठानिया ने। प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार लेके जाएंगे। साथ
1: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था,

श्रोता कह रहे हैं, ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पाँव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफ़र तो पूरा करना है। तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफ़र इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को हैं पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना,

श्रोता कह रहे हैं, ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पाँव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफ़र तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफ़र इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को हैं पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है, रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है, पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ही आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं, दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात

0: सावन याद आता है, कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं, देखे हैं आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज़ के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियाँ, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीज़ें ज़रा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छाँव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छाँव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से ज़रूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की 7 चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो, बाप रे। ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफ़ी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूँगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीज़ें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो ज़रा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज़, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज़ धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियाँ बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियाँ, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना

जरूरी है क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था। मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं। ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खौलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छाँव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी ख़राब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितनी इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयाँ आती थी, उन्हें भीग कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयाँ नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे ज़मीन में पोछा लगा कर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज़ किन की है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज़ और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज़ मौसम का क्या बदला नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज़ के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता के अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना, सेक्रेटरी पीसी लियोन।
0: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
2: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फ्यूलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
3: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9,000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: विचारा,
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज

0: दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा।

0: दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में सात बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
4: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाज़ों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज़ में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपा कली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है और आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामयिक चर्चा लेके जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, राडार कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत BSF की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित PM श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें।
2: हिमालयन जनकल्याण संस्कृति मंच और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में बिना किसी सरकारी अनुदान के हम वॉलंटरीली यहाँ पे एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थी जैव विविधता के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थी पेंटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैव विविधता के विषय में एक जन जागरूकता बढ़ाई जाए। जंगलों में आग लगती है, जैव विविधता हमारी नष्ट हो जाती है, उसमें जागरूकता क्रिएट करें।
0: राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
3: हिंदू संघर्ष समिति सनातन हितों और हिंदुओं के हितों के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है, वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर

0: नहीं है। इस डेमोग्राफी की आड़ में क्या क्या चीजें पनप रही है, यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहां से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी व हवाएं चलने से लोगों को लू के थपेड़ों से मामूली राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और अगले 2 दिन भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
2: ये जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशन देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है योग महोत्सव 2026, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
4: प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग विश्व भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सबसे विश्वसनीय साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल शब्द यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना, जो मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म की एकता, संयम व संतुष्टि, मनुष्य व प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि योग जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के अभ्यास के लाभों के बारे में व्यापक जानकारी का प्रसार विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। इससे समग्र स्वास्थ्य क्रांति का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें उपचार की तुलना में रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। इस वर्ष देश में योग दिवस को योग महोत्सव 2026 के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर 100 दिनों की यात्रा के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण की 100 दिन की उल्टी गिनती का प्रतीक है। इसका उद्देश्य योग के विविध आयामों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, कल्याण व शांति के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। इसके तहत विभिन्न आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए गैर संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल को चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय ने वैश्विक भागीदारी में निरंतर वृद्धि के साथ 11 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। योग केवल एक जीवन शैली नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अनुशासन है। ये मानसिक स्पष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। इसके लाभों ने लाखों लोगों को कोरोना महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी लचीलापन बनाए रखने में मदद की। गैर संक्रामक रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल शुरू करते हुए आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये प्रोटोकॉल विभिन्न आयु समूहों और जीवन के विभिन्न चरणों के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। इससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक जिम्मेदारी ले सकेंगे, शारीरिक और मानसिक लचीलापन बढ़ा सकेंगे और

जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने हवाई यात्रा के लिए योग प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया। ये विशेष रूप से तैयार किया गया 5 मिनट का एक कार्यक्रम है जिसमें बैठकर योगासन, श्वास व्यायाम और संक्षिप्त ध्यान शामिल है। विशेषज्ञों द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य हवाई यात्रा के दौरान यात्रा संबंधी तनाव को कम करना, रक्त संचार में सुधार करना, मांसपेशियों की तकलीफ को दूर करना और मानसिक शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 100 दिन की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने योगा 365 अभियान के अंतर्गत हैबिल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रतिदिन निशुल्क ऑनलाइन योग सत्र प्रदान किए जाएंगे। योग 365 का उद्देश्य व्यक्तियों को योग को दैनिक आदत के रूप में अपनाने में मदद करना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले निरंतर अभ्यास और गहन सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा। योग महोत्सव 2026 समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक नए वैश्विक आंदोलन का मंच तैयार करता है। कर्तव्य पथ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को मजबूत किया है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
2: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
1: अच्छा अच्छा
2: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
2: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
1: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग

0: किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
1: हाँ,
0: जी, तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है इसके अलावा, बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाएं। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स रहे हैं अम्मा बाबू जी।
0: जी
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी,
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ, रेडियो हमारे यहाँ बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है,
1: हाँ,
0: अब कहीं भी बैठे
1: हाँ,
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ,
0: लेकिन वो ज़माना, वो रेडियो का जो दौर था, वो ज़माना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने MA सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, यानी सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ,
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री हैं एकदम।
0: जी
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो
1: हाँ,
0: बड़ा अच्छा
1: ये
0: लगा।
1: सब मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगी?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई, है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। तो आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल
1: नहीं, मैं
0: पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए, ऐसा करना पड़ता है
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा,
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए
2: डाल के, जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी,
2: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
0: जी,
2: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
0: जी, जी।
2: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित, सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा, अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी।
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी, सबसे ज़्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश रहूँगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ।

0: बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ,
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी, हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली यानी स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजुल सी सरलता।
0: क्या बात।
1: धन्यवाद।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022।

0: दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सगा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। साय के 4 बजे हैं। इस समय आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझ

0: प्यार मिले।
1: राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और

उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी ज़रूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज़ ख्वाहिशात और वाहियात रस्म व रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंची

दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था। राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नज़र नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमज़ोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज़्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

0: थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम?
1: मेरा नाम सुधीर पांडे है,

लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

0: चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।
1: जी।

0: बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफ़ी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को ख़त्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आँखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है? सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें। कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुँह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं और पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन गैर फिल्मी। सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज अब से लेकर रात 11:10 तक मैं रहूंगी आपके साथ वर्षक टोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के भजनों से। ये रही पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना तृप्ति शाक्य व सखियों की आवाज़ों में गाया ये भजन, भजन गैर फिल्मी। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा की आवाज़ में गाया ये भजन, भजन गैर फिल्मी। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन गैर फिल्मी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज हमारा विषय रहेगा फिल्मी फ्राइडे।

0: कार्यक्रम युवा मंच के सभी श्रोताओं को, हमारे प्यारे युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हाजिर हैं युवा मंच कार्यक्रम लेकर एक नए अंदाज के साथ। जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, कार्यक्रम तो युवा मंच ही है, परंतु उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। जैसे हर दिन जानकारी तो हम आपके साथ साझा करेंगे ही, लेकिन एक नए अंदाज में, नए स्वरूप में। तो चलिए युवा साथियों, आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए बता देते हैं कि युवा मंच कार्यक्रम में आज बात करेंगे फिल्मी फ्राइडे की। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हर शुक्रवार को दोस्तों हम आपको अवगत करवाएंगे किसी भी फिल्म से, और जो आज के दिन रिलीज होते हैं फिल्में, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई फिल्मी फ्राइडे की। पर युवा साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मेनली आज हम बात करेंगे 1990 के दशक में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी के बारे में। और जैसे फिल्मी फ्राइडे की बात की, तो चलिए बता देते हैं, क्योंकि हमारे युवा साथी पढ़ने में इतने व्यस्त होंगे या अपने काम काजों में इतने व्यस्त होंगे, उन्हें शायद ही पता हो कि आज के दिन रिलीज हुई फिल्म चांद मेरा दिल, जिसमें मुख्य भूमिकाएँ निभाई अनन्या पांडे, लक्ष्य लालवानी ने। और ये तो हुई आज की रिलीज की बात, लेकिन मेनली हम बात करेंगे राजा हिंदुस्तानी की। परंतु ठहरिए दोस्तों, आज हम एक और सरप्राइज आपको देना चाहेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में युवा मेहमान आए हैं, जिनका नाम है अंशुल शर्मा। जी हाँ युवा साथियों, आज हम इनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे, और इनके साथ भी हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म की बातें जो हैं वो साझा करेंगे, जो कि आप तक पहुँचेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान अंशुल शर्मा जी का अपने स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आकाशवाणी के सभी

0: श्रोताओं और मेरे युवा दोस्तों को अंशुल शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी अंशुल शर्मा जी, तो नमस्कार तो हमारे युवा साथियों ने अवश्य ही आपका स्वीकार किया होगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि हम नए अंदाज में युवा मंच कार्यक्रम जो है वो आपके समक्ष रख रहे हैं, तो दोस्तों आज हम युवा साथी जो हैं हमारे अंशुल शर्मा जी, इनसे ही पूछते हैं, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म की, तो इनसे भी हम पूछते हैं कि क्या इन्होंने इस फिल्म को या इस फिल्म के गानों को कभी सुना है, या इनको कुछ अपने बचपन की यादें इसके बारे में हैं जो ये हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। तो चलिए अंशुल, बताइए कि क्या आप राजा हिंदुस्तानी फिल्म के जो गीत थे तो आपने सुने हैं ये गीत?
0: जी मैम, मैंने इस फिल्म के सारे गीत सुने हुए हैं और ये फिल्म काफ़ी मशहूर थी। इसका सबसे पसंदीदा गाना है मेरा परदेसी परदेसी।
1: जी चलिए, ये गीत तो हम अपने युवा साथी अंशुल शर्मा जी को सुनवाएंगे ही, लेकिन मैं युवा साथियों से ये भी कहना चाहूँगी कि ये वो दौर था 90 का कि जब कैसेट्स का दौर होता था और इतना लोग सुनते थे कि अंत में कैसेट का जो स्पूल होता था इन गानों को सुन सुन कर वो भी घिस जाता था। तो चलिए हम अपने युवा साथी अंशुल शर्मा की पसंद पर सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, जिसने अपने समय में इतनी धमाल मचाई कि बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की जुबान पर ये गीत रहा।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
4: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
3: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
4: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
4: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
5: जी हाँ युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज बात हो रही है फिल्मी फ्राइडे पर। तो दोस्तों, ये है युवा मंच का बदलता स्वरूप। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ युवा मेहमान बैठे हैं, अंशुल शर्मा जी। तो चलिए इनसे और हम जानकारी साझा करते हैं, बातचीत करते हैं। अंशुल जी, तो क्या करते हैं आप?
6: जी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में MBA का छात्र हूँ।
5: क्या बात है, तो रेडियो सुनते हैं?
6: जी मैम सुनता हूँ।
5: पक्का सुनते हैं?
6: जी मैम पक्का सुनता हूँ।
5: तो कैसा लगता है आपको रेडियो सुनना?
6: काफ़ी अच्छा लगता है मुझे रेडियो सुनना। रेडियो में न्यूज़ सुनना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा न्यूज़ के, तो मुझे अच्छा लगता है। और इनके कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छे होते हैं।
5: बिल्कुल, और आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे रेडियो की जो न्यूज़ होती है उसमें और कुछ नहीं होता है, बिल्कुल स्टीक और सही जानकारी के साथ जो न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे युवा मेहमान जो हैं वो रेडियो के बहुत ही चाहने वाले हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रेडियो सुनते हैं पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इनको पता है कि रेडियो जो है वो जानकारियों का बिल्कुल सही माध्यम है। और इसमें आपको देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ सुनना होता है। तो चलिए, आज हम बात कर ही रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म पर। तो युवा साथियों, मैं आपको बता दूं कि दिल तो पागल है और आशिकी और दिल, इन फिल्मों के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो एल्बम थी वो थी राजा हिंदुस्तानी। जी हाँ, इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी और इसका हर एक गाना जो था उस समय बहुत ही, उस समय की क्या बात करें, अब तक मतलब इस फिल्म के गीत सारे एवरग्रीन हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा अंशुल?
6: जी मैम बिल्कुल सही।
5: तो और गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
6: जी मैम ज़रूर सुनना चाहेंगे।
5: चलिए तो सुनते हैं और अपने युवा साथियों को भी सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी का ये अगला गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।

युवा साथियों, आपको बता दें कि इस फिल्म में जो मुख्य किरदार थे वो थे अर्चना पूरन सिंह सहगल और टिकुतल सानिया, फरीदा जलाल, प्रमोद मुथु, मोहनीश बहल, कुणाल खेमू, रजा खान, प्रतिभा सिन्हा। और सबसे मुख्य भूमिकाएं जो थी वो थी करिश्मा कपूर, आमिर खान, फरीदा जलाल की।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहुंच चुके हैं अंतिम क्षणों में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म के जो गीत गाए थे वो थे उदित नारायण, अलका याग्निक, अलीशा चिनॉय, सपना मुखर्जी, बेला सुलाखे, सुरेश वाडेकर, ये सभी जो गायक कलाकार हैं, इन्होंने अपनी मधुर आवाज़ जो थी वो इस फिल्म में गीतों के जरिए दी है। और इस फिल्म को ना जाने कितने अवार्ड जो थे वो मिले। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आमिर खान को मिला, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार करिश्मा कपूर को मिला, संगीतकार का जो पुरस्कार था वो नदीम श्रवण के हिस्से में आया, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जो था वो उदित नारायण के हिस्से में आया। तो अब घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, लेकिन हमने अपने जो युवा साथी हैं उनसे एक सवाल तो बनता है कि क्या आपको पता है कि इस फिल्म में संगीत निर्देशन यानी कि म्यूजिक डायरेक्शन किसकी थी?
3: जी हाँ मैम, मुझे पता है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण जी थे और लिरिक्स लिखे थे समीर जी ने।
2: जी देखिए युवा साथियों, ये कितने जागरूक हैं, हालांकि इन्होंने बचपन में ये फिल्म सुनी और देखी है लेकिन फिर भी सब कुछ याद है। तो अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोश को ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ युवा साथी अंशुल शर्मा जी को आपके साथ रूबरू करवाया। आप बताइएगा ज़रूर कि ये अंक जो है हमारे युवा मंच कार्यक्रम का आपको कैसा लगा, चाहे आप खत के जरिए बताएं, चाहे आप व्हाट्सएप के जरिए बताएं, लेकिन बताइएगा ज़रूर। और जाने से पहले कहना चाहूँगी, मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अंशुल जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने विचार साझा करने का।
2: जी शुक्रिया। और जाने से पहले बता दें, इस मनोरंजक और जानकारी भरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह। अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सदाबहार संगीत। शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें जानकारी का विषय है वनों को आग से बचाएं, साथ ही साथ लोकगीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा। कार्यक्रम की सानवाणी सुनिएगा शाम 7:10 पर। इसमें आपको कृषि कार्यों में बीजों का सही चुनाव विषय पर जानकारी दी जाएगी, साथ में लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। अनेक रंगों से भरा कार्यक्रम सबरस रात्रि 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कोई मिल गया फिल्म से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। नई फिल्मों से कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार व रात्रि 8:00 आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 व रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर व समाचार संध्या व रात्रि 9:00 News@9 भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थे विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के लोकायुक्त चंद्रभूषण बरोवालिया ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बरोवालिया ने राज्यपाल को लोकायुक्त कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संस्था की कार्यप्रणाली व जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कविंद्र गुप्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकायुक्त संस्था की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन को सुदृढ़ बनाने में लोकायुक्त की भूमिका अहम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्था भविष्य में भी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जन विश्वास के साथ अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करती रहेगी। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीन राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
1: 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शंस होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स पर आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्यूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं

0: व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
1: जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशन देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार संगीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। सदाबहार संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे कुमार शानू अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना कुमार शानू अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों को। इसमें संगीत दिया था बाबुल बोस ने। सदाबहार संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा टोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गीत गाया पत्थरों ने, फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में गाया गीत, गाया पत्थरों ने फिल्म से यह गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में आई मिलन की रात फिल्म से।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: सदाबहार संगीत कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और ये सदाबहार संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आजा सनम फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सदाबहार संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें वनों को आग से बचाएं विषय पर आपके साथ बातचीत की जाएगी।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राई दियां सुना करदे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी हो अज टियाले पर मिंजे सोगी
1: जोधा राम जी ता बड़का चाचू जी तुहाना अजकल मारा ना भुलिया दे
0: ओ दिखा जोधा राम जी से बोलते रहे धुप्पा दा जड़ा ए पटाका फुंदा ना ए बड़ा खतरनाक पवा करता है।
1: दिखा इस टाइम मैं ता समझा दा बेला ना पर पटाका ता जो धुप्पा दा नहीं है तो पटाका जरा लगे ऐसा वोटा का लगे है ना जी
0: बिल्कुल
1: जरा बड़का है खड़ोत्या पंची है पर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कदम खलासी थोड़े छड़ा नहीं भाई दिन रात तो हाँ जरा बरकरी लगे हो कहना दिखा भाई वोट भी होते है ना चुनाव भी होते कहना असा ऐसा उम्मीदवार चुनना है इस बारी जरा कि असं जो लगता है कि पढ़े लिखे तो है ही है सौगी सौगी जो असें ग्रां के कामों जो भी जो बड़े अच्छे तरीके ने करवाई सके ग्राएं की उन्नति करवाई सके है ना जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहना गल करने वाला हो
0: जी जी जी
1: कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं चुनी लीए कि तुसी एप्लीकेशन लिखना नहीं हुआ तो फिर ही भाई इसका क्या फायदा है ना जी
0: बिल्कुल
1: कल ग्राएं कोई समस्या आई है कि हाँ बोलिए भाई इसका हाँ कोई एप्लीकेशन लिखनी है कुछ की गांह देनी है ऐसा है ना
0: जी जी जी
1: एप्लीकेशन लिखने वाला तो है ना भाई बंदा है ना जी
0: बिल्कुल ठीक गला करते हैं जोधा राम जी कि असा ऐसे मतलब जो उम्मीदवार चुनने जो कि ग्रां के दुख सुख च मतलब अपना जो सहयोग भी देना
1: मैं तो बोलता युवा कने प्रतिभाशाली होना
0: जी जी
1: बड़ा अच्छा रहता है ना जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कने सोगी सोगी जी कि कार्यक्रम मौजा ग्राई दी है तो इस कार्यक्रम में असं गल करते अपने ग्राएं की खुशहाली के बारे में ग्राएं की तरक्की के बारे में कहना ग्राएं में क्या क्या चले अजकल है ना जी
0: बिल्कुल
1: कने अजकल असं तो गल बात कर सकते क्योंकि अजकल थोड़े दस अपने वेले हुए हैं अपने खेतीबाड़ी के कम है ना
0: जी
1: थोड़े दे ख्याल समझो जो सै अपना रखने वास्ते भी जो सै हूँ समय मिला है कने जो सै असं जैसे हूँ अपनी थोड़ी धार्मिक यात्रा भी शुरू कर रही है कहना घर जरा अनाज का पहला ओरा जो कड्डी कर रखे सभी अहम देवत चढ़ाना चाहिए करी
0: बिल्कुल
1: कहना बड़े सारे लोग जरा धार्मिक यात्रा भी करा करते ग्राएं बच्चे
0: लेकिन
1: कई बार क्या होंगे बड़का चाचू जी असा जलू पहाड़ा वखे जाते ना तो पहाड़ा दिखी करी मन तो खुश होंगे होंगे ना लेकिन कुछ कुछ उदास भी हो जाता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना जी तो मेरा सारा समझते होने अजकल गर्मियों के दिन लगे हो ना कहना असा देखते कि पिछले कुछ सालों के जरा बड़े सारे जंगल जली करी जरा राख हुई है
0: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखा कि कई बार तो क्या होंगे ना जोधा राम जी कि कुछ लोग लापरवाही के कारण भी जंगल च आग लगने के जो कारण भी रेंदे न और कुछ लोग अपने फायदे ताई भी जंगल च आग लगाने का जो प्रयास भी करते हैं है ना देखा कि इन दिनों च जियां कि मते सारे जो सुखे चलाफू के जंगल च पे होंगे है ना और हूँ गां जो दो या दो महीने बाद या डेढ़ महीने बाद बरसात होने वाली है तो कुछ लोगों का मैं मतलब जी ग्रां च देखे कि यह मानना होंगे कि जी इन्हें चलाफू जो अगर चलाई देंगे ना तो गां जो इस गां के भी बड़ा बांका तैयार होना साढ़े पशु वास्ते
1: लेकिन एक गलत धारणा है ना जी,
0: जी, जी, जी, जी, जी, जी
1: जलाने ते अहां दे बुजुर्ग क्या करते हैं कि जलू असा बड़े छोटे थे ना तो अहां दे बुजुर्ग बोलते हैं कि हुण तो बड़ा अग लगा ही है भाई पहले तो अग लगदी नहीं थी असा क्या करते हैं बोले कि हुण पहले दे बुजुर्ग बेले भी होंदे थे है ना थोड़ी गरीबी भी होंदी कि पैसा नहीं होंदा लेकिन टाइम बड़ा भारी होंदा
0: बिल्कुल
1: इस टाइम में तो असा फायदा चुकते ही मैं तो बोलता इस टाइम में बड़े अमीर आदमी थे
0: क्योंकि
1: अपने टाइम का बड़ा इस्तेमाल करते हे कहते ना बने जाना कहना चलाफू लोने बोरियां च भरे करी सारे ग्राएं वाले है ना जी चलाफू लेने तो चलाफू का निपटान भी हुई है कने गा भी जरा डंगरे लगी जाना बरसाती कहते ना चलाफुआ दे बड़े सारे जरा सा घर जलाने वास्ते जिन्हें कुंजियां बनाते थे कहते सन ऐसा जलाने वास्ते चूल्हे का काम भी हुआ करता हाँ
0: बिल्कुल कहना तिना चलाफू का हाँ प्रयोग के भी अपने पशु का जो बिछावन होंगे ना जी कि हाँ इन्होंने दिनों चलाफू के भी इकट्ठे करी लेंदे हे
1: जी
0: मते सारे जी जगह जगह मतलब ढेर लगाईते न तसे चलाफू के होंगे कि जी अगला जो आने वाला मौसम होंगे जी बरसाती बाद ठंड वाला तो ठंड के मौसम जो देखा कि बोलते हैं कि जियां जियां मौसम बदलाते उस हिसाब से सू अपने काम काज भी बदलना पौंदे न और पशु की देख रेख च भी जो बदलाव के भी आते हैं तो उन्होंने दिनों च ठंड वाले दिनों क्या होंगे कि बिछावन अच्छा हो पशु वास्ते तो जियां कि हूँ ये चलाफू जंगलों में तो इन्हों जो एकत्रित करके तो जियां अगे वास्ते मतलब पशु के बिछाने ताई ये कम्मे आते थे
1: बिल्कुल सही गल
0: हाँ गप करा करते कि जियां कि मतलब इन्होंने दिनों कई बार सू देखने कि जंगल च आग के भी कई बार लापरवाही ने लगती है कई बार किया भी लगी सकती है मतलब।
1: बिल्कुल जी दिखा लापरवाही लगे चाहे किया भी लगे इस वास्ते जरा लोग ही जिम्मेवार हैं असा इसके बारे चोर भी गां गल करनी है कि असा होर जरा अजकल के जमाने में क्या क्या कर सकते कहने पहले बच्चे क्या क्या होंगे हा तो असा जरूर इस बारे कोई गलबात करनी है लेकिन इससे पहले सुन लेंगे असा एक लोग गीत
0: जी
1: है ना जी लेकिन लोग गीत पहले सुनना असा एक संदेश
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान साथियों, लोक गीत और संदेश के बाद फिर जड़ी यहाँ गलबात करा कर दे कि जिया बणा च आग लगदी और अहां किया मतलब रोकी सकदे ने।
3: हां, इस गाने विच भी अहां सुने ना जी, जुग जियो धारे रे गुजर
2: बिल्कुल
3: देना मेरे गाड़ा जो बसे खाओ। तो गाड़ हुंदे है पहले
2: जी जी जी जी
3: है ना जी, बणा जी रक्षा वास्ते गाड़ हुंदे थे है ना जी। बणा दी पूरी रक्षा करनी थी ना, कदे जेड़ा भी कोई बूटे जो कटदा हा कने ले जांदा हा वड्डी जांदा हा तिन्हां दा चलान भी कटदे है है ना जी। कने तिन्हां जो उपर केस भी लगदा हा, लेकिन जिखा जिहड़ा चुपचाप आई करी राती अग्गी लगाइया देखना सारे बणा जो भड़काइया दे
2: जी जी जी
3: सदा दुसदे भी नहीं ना तिन्हां पर। क्या गुनी भी केस करना, कहना क्या तिन्हां दा चलान करना, कहना क्या तिन्हां पर जुर्माना लगाना।
2: बिल्कुल,
3: तो ये जिम्मेवारी बनती असा कहना तुसा लोगों की, जरा भी ये कार्यक्रम सुना दे इस वक्त है ना जी।
2: बिल्कुल,
3: कहना हो सकता कोई ऐसा बंदा भी कार्यक्रम सुना दूंगा जिस लगा दूंगा कि भाई मैं जाए करी जरा ऐसा जरूरी काम करना है। तो भाई दिखा अपने स्वार्थ वास्ते तो हाँ, अगर एक काम करके तो इस दिक्कत ने सारे नुकसान होने है ना जी।
2: दिखा कि जंगल च कितने जेडे छोटे छोटे जीव जंतु होंगे ना, है ना, कितनी जान मान का जरा नुकसान के भी होंगे।
3: बिल्कुल,
2: और जेडे ये बेजवान जीव जंतु होंगे ना, दिखा कि इन्हों की भी मतलब जी बोलते ना कि इंसान इन्होंने वास्ते मतलब दे चीज़ा अगर करेंगा तो फिर कुथुए मतलब अपना बसेरा करेंगे।
3: और दिखा ना बरगद जरा पहाड़ी इलाका है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: इस पहाड़ी इलाके में दिखा चिड़िया तो चलो होनी है ना जी, चिड़िया तो दिखा गटी हैं उइं भी, लेकिन इस एक प्रजाति होंगी जिसे हाँ कुक्कड़ बोलते बन कुक्कड़
2: जी।
3: तिना बन कुक्कड़ा जो तुम दिखा तो तिना की एक अलग ही शोभा होंगी है ना जी, दिखने जो बड़े शैल होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: है जरा हाँ घर है कुक्कड़ पाले होंगे ना सभी दिखने शैल होंगे, लेकिन जरा बने दे कुक्कड़ होंगे ना भाई यार
2: जी जी,
3: अलग अलग तरह के प्रजातियां होंगे तो हाँ एक ही बने तो चली जाता, बड़ी सारी प्रजातियां तो जो बने कुक्कड़ जो दिखने मिली जाने जंगली।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कने अलग अलग कलगियां तिना दी, अलग अलग पंखा के रंग तिना दें है ना जी, मालिक ने पता नहीं किस हिसाब ने तिना जो इतना सुंदर बने। लेकिन असा क्या करते कि जलू बना जो अग लगाइए ना तो तलू ये सारिया प्रजातियां जरा धीरे धीरे नष्ट हो दी।
2: बिल्कुल,
3: कुछ एक जरा निजी है जी कि अपनी जमीन है बने बिच कई दी तो तुसें नहीं अग लगन दें तो ना बाउंड्री लगाइए तो तिथु तिना की पैदावार ज्यादा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जी कि तुम इतों तो चली जा जी कि अहाँ के टियाले के उपरले पखे के लक पौधा कर बड़ा बड़ी पुराना सिद्ध पीठ है, एक गंजर महादेव का मंदिर है
2: जी जी जी जी।
3: कने सह गंजन महादेव का मंदिर का जितना भी बना है ना तिथु सारा ही जड़ा है सह तिथु कटान करना, कोई अग लगने की कोई घटना नहीं होंगी। तो तिस तिथु जाओ तो मंदिर में तुम बण कुक्कड़ दिखने मिली जाने।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन चलो तो फॉरैसट के एरिए जाना है ना जितों की खुला होंगे लोग बना जग लाते हैं तो तुम ये प्रजातियां दिखने जो नहीं मिलनी है।
2: बिल्कुल
3: है ना जी। एक गोलर हों, गोलर एक ऐसी प्रजाति है जरा पक्षियों भी पक्षियां हाइए कुकड़ा हाइए थोड़ी उड़ती क्या फिर बैठी आती, गटारी हाइए दिखने होंगे लेकिन उड़ता क्या फिर बैठी आता है ना जी। तो तिस ज़्यादा नहीं उड़ी होंगे तो सभी जरा ऐसा अपना अल्लाह कने अपने कुड जरा से तुथु ही बनाते जितों की बन होंगे क्या बड़े बारे जना बना क्या छोटे छोटे जोड़े लगे होंगे पंच फुलियां तो तुथु बिच दी जाए करी रेंदे जलू कि असं बना जो अग लानी है तो इतनी छैल छैल प्रजातियां जरा सू दिखने नहीं मिलती।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: है ना जी। तो असं ये आग्रह करते थोड़े ने कि अपने स्वार्थ वास्ते जरा तुसा दे कम नहीं कमाना।
2: बिल्कुल, कहने अगर कोई ऐसा शरारती तत्व तो जो पाया जाता है ना कि भी तुम अगर दिखी लेंगे कि इस माणुए मतलब इं आग लगाई है जंगले च तो तुसा यदि जी शिकायत कहने भी पंचायत के जेड़े प्रधान होंगे या प्रतिनिधि तुसा कहने भी संपर्क करी सकते हैं या फिर अपना जोड़ा जंगलात महकमा जो दफ्तर होंगे उतु जाके भी तुम जी शिकायत कहने भी करी सकते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और कोशिश यही करनी है किसान साथियों की एक तो आग लगे नहीं और लानी नहीं है, और अगर सांजो साढ़े अखे पखे आस पड़ोस या जंगल च कुछ भी सांजो अगर आग दुसदी है तो सांजो सारे जो ही रली मिली के वो आग के भी यहाँ बुझानी है ताकि जड़े जीव जंतु के निसे बेचारे मतलब बचियान
3: बचियान कहना अगर घट मात्रा च लगी तो सारे जरा से बजाए बजाई सकते कहना प्रयास कर सकते, लेकिन अपनी भी जरा से जानी का ख्याल रखना।
2: बिल्कुल,
3: बना दी अग जरा सा बजानी कहना सोगी जरा से फॉरेस्ट गार्ड हुई है सोगी बन अधिकारी हुई है ਤਿਹਨਾਂ ਜੋ ਸੋਗੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਿਹਨਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਜੋ ਗਾਹ ਵਧਣੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
3: ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਣਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦੀ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ
3: ਜੀ

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां इत्थों संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा सुनील कुमार, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने टैल दे सदस्य बड़का चाचू
1: कन्नै जोधा राम जी दी अनुमति।
0: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Indian Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation and multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
1: आज हमने global issues पर भी चर्चा की, Ukraine हो या West Asia, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए global challenges के समाधान के लिए global institution का reform urgent और important हो है।
2: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela tomorrow morning through video conferencing. Mr. Modi will also address a gathering on the occasion. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha bi-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The bi-poll will also be held on the 18th of next month. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopy of answer book of Class 12 board examination by one more day to the 24th of this month. Earlier, the last date of obtaining the answer book was till tomorrow. CBSE took the decision after its website faced unprecedented traffic since the past few days and also faced several attempts of unauthorized interference, which has made it prone to disruptions. The Ayushman Bharat Digital Mission has achieved a major milestone with over 100 crore health records successfully linked with Ayushman Bharat Health Accounts, ABHA. The Health Ministry said that the number of linked health records has doubled from 50 crore in February last year to over 100 crore in just 15 months. It said that nearly 10 crore health records are now being linked every 2 to 3 months. The government said that India's electricity demand hit a new record high in the last 4 days with soaring temperatures across several parts of the country. The Minister of Power said that yesterday daytime peak electricity demand was 270.82 gigawatt, which has broken all previous records. On Wednesday, it was more than 265 gigawatt, while on Monday and Tuesday, the demand was over 257 and 260 gigawatt. It said that the peak daytime demand usually occurs between 2 p.m. and 4 p.m. National Highway Authority of India, NHAI, has signed a Memorandum of Understanding, MOU, with

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज कृषि कार्यों में बीजों का सही चुनाव विषय पर आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथियों टियाले पर नमन जसो की जोधा राम ता जोधा राम जी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी राम राम। और ठीक ठाक है ना?
0: बढ़िया जोधा राम जी बहुत बढ़िया कहना। इस वेले तो मैं बोला था बहुत ही बढ़िया क्योंकि टियाले दी जड़ी ठंडी ठंडी हवा है ना भैया कितना जड़ा बहना था मजा हुआ करता है ना।
1: सही गल है दूबा मजा भी है कि थोड़े खेती बाड़ी के कमां ते थोड़ी राहत भी मिली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अनाज भंडारण भी हुई है बढ़िया करीके ना है ना जी।
0: जी जी जी
1: हुण जड़ा सा थोड़ा दे अपने वास्ते भी जड़ा सा समय मिला था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कन्ना दिखा बड़का चाचू जी गल और हुण जड़ा सा गां जड़ा सा कम कार करने ना।
0: जी जी
1: कन्ने गां जी सब्जियां लानियां ने बरसाती वालियां भी आ सब्जियां लगानियां कोई बेल वालियां सब्जियां लगानियां है ना जी। कदा अहां के करदे ते ना सब्जियां जो बाणे दे पहले असां बीज जड़ा सा बाजारे ते खरीददे।
0: जी जी जी
1: कदा कोई भी सानू बीज जड़ा सा मिली जांदा तां अहां तुसीं घरे ले आउंदे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तां क्या हुंदा कि बीज जां सही चुनाव करना बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल कहना देखा कि बीज जड़ा है ये जियां कि कृषि भारत दी जिहड़ी अर्थव्यवस्था दा आधार है कहना है देश की मती सारी जनसंख्या अज भी खेती पर के भी जोधा राम जी निर्भर है।
1: हाँ जी
0: कहने कृषि उत्पादन की सफलता च कई खास गल्ला बातों का ध्यान रखना के भी जरूरी है।
1: हाँ जी
0: जिया कि भूमि की उर्वरता सिंचाई जल जलवायु कहना खाद और उन तकनीकों का तो इन्हें सारे च बीज का जोड़ा विशेष महत्व होंगे है कहना बोलिया भी जाता है कि अच्छा बीज ही अच्छी फसल की सीढ़ी है।
1: जी
0: अगर किसान सही बीज का चुनाव करता है तो घट लागत च ज्यादा उत्पादन के भी मिल सकता है। कहने बीज किसी भी फसल का मूल आधार होता है जिस तरह एक मजबूत नींव पर ही अच्छा जड़ा भवन के भी बनी सकता है उसी तरह उत्तम बीज दे ही स्वस्थ और अधिक उत्पादन देने वाली फसल तैयार होती है।
1: जी
0: कहने जी दिखा कई बार क्या होंगे कि खराब या फिर जड़े रोगग्रस्त बीज खेत्र च बोने देखे होंगे कि फसल कमजोर होंगी है और उत्पादन भी घट मिलता है तो इसते किसान जो आर्थिक नुकसान होंगे है। अगर बीज उच्च गुणवत्ता वाला होंगे तो फसल रोगा कने कीटा का सामना के भी बेहतर तरीके कने कर सकती है और पैदावार भी ज्यादा मिलनी है। कहने बीजा के सही चुनाव ताई सार दे पहले जलवायु और मिट्टी का ध्यान रखना के भी बड़ा बड़ी जरूरी है।
1: जी
0: हर फसल और उसकी विशेष किस्म मतलब प्रकार की जी मिट्टी है मौसम च ही अच्छे के भी होंगी है। जिया कि धान की खेती ज्यादा जो बरखा वाले क्षेत्र च अच्छी होंगी है और गेहूं के भी ठंडे मौसम च ज्यादा ठीक रहती है।
1: सही गल
0: है इसी तरह काली मिट्टी च जिया कि भी कपास ताई उपयुक्त मनी जाती है तो इसी दिया कि इसी तरह किसान जो अपनी भूमि और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार बीजा का चुनाव के भी करना है।
1: हाँ जी
0: जिया कि उन्नत और प्रमाणित बीजा का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के भी सहायक है। कने प्रमाणित बीज सरकार या कृषि संस्थानों द्वारा जांचे कने परखे जाते हैं इन्हों च अंकुरण क्षमता ज्यादा होंगी है और बीमारियों की जी संभावना के भी घट रही है।
1: जी
0: अजकल कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय किसान जो नई नई उन किस्म के बीज के भी उपलब्ध करा करते हैं इन्हों बीजा के उत्पादन च वृद्धि होंगी है और किसानों की आय के भी बढ़ती है।
1: बढ़ती है सही गल है।
0: कहने रोग प्रतिरोध प्रतिरोधक बीजा का जो चुनाव करना आज के समय की जरूरत बनी गई है।
1: जी
0: मती सारी फसलें जिया विभिन्न प्रकार के रोग कीटा के प्रभावित होंगे तो अगर किसान रोग प्रतिरोधक किस्म का प्रयोग करता है तो फसल जो घट नुकसान के भी होंगे कहने इसके कीटनाशक का खर्च भी घट हों और पर्यावरण की सुरक्षा भी होंगी है।
1: सही गल
0: कहने इस एक खास गल यह है जोधा राम जी की बीजा का सही भंडारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्होंने सही चुनाव करना है।
1: जी
0: अगर अच्छे बीजा जो नमी गर्मी या कीड़े दे सुरक्षित रखा जाए तो उन्होंने जी गुणवत्ता के भी मतलब रखते तो गुणवत्ता खराब हो सकती है तो बीजा जो सुखी कहने ठंडी जगह पर ही सुरक्षित रखना चाहिए।
1: बिल्कुल जी कने बीज दा उपचारित करना बड़ा जरूरी है जल्द भी असं बीज बांधे ने
0: जी जी जी
1: बीज उपचारित करके बांगे तो हम फसल जड़ा सा बिल्कुल सही ढंगे ने जड़ा सा उत्पादन दिंदी है। कने दूजी गल बड़का चाचू जी एक और मैं बीज ने एक गल और जुड़ना चाहता
0: जी जी जी
1: एक तो बीज हुंदा असां बाहरे दी खरीदते है ना जी लेकिन पहले बाजार नहीं होंगे तो लोग बीज कितना लेंदे हे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना जी तो बीज लेंदे हे अपने घर से
0: बिल्कुल
1: ना कोई भी जड़ा ऐसा है जियां दिखा अजकल असं दिखते कई बार ना कि एक कद्दू हुंदा ना जियां तो कद्दू दा बीज इयां रखी लेंदे कई रंगां बोलते कि पक्की जां कद्दू फिर भी रखिया तो अम्मा बोलती बीज बस रखिया
0: जी जी जी
1: असां सुकी जांदा कने इत्थों दे जड़ा सा बीज जड़ा सा लेंदे कने अगले बार फिर जड़ा सा कद्दू दे बेल ते इत्थों दे लेंदे तो इस तरीके ने जड़ा सा बीज अपने घर दे आई जांदा।
0: जी जी
1: अजकल दिखा असां अपने देसी जड़ा चौल हुंदे हिमाचल दे खुशबू वाले ना दे बीज जरा आस्ता आस्ता कटाईता कने हूँ जरा बीज असा लैते बहरे ते बलोक के बीज लैते
0: जी
1: कन्नै बीऽ असें उं'दा बाह्रे ते कन्नै हून असें देसी चौलें च असें खुशबू नहीं रही है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अम्मा दे हत्थे दी जेल्लै लुगड़ी बनदी ही ना
0: जी जी जी
1: लुगड़िया दा बड़ा सुआद होंदा हा। लुगड़िया दे खट्टे दा सुआद जेह्ड़ा असें हून हा तरसी ओ क्योंकि असें जो असें कुत्थी कुत्थी जाई करी असें बीज जेह्ड़ा असें मिलता है। असें आपूं अपने घरै दी गल्ल दस्सिए तां असें ते बीज जेह्ड़ा असें देसी असें अपने चौल जेल्लू कड्ढदे न है ना जी
0: बिल्कुल
1: असें
0: बिल्कुल
1: बीज असें पराना बीज जेह्ड़ा असें लेकर दा सुआद नहीं होंदा है ना जी।
0: जी जी
1: कनका दी गल्ल कर लीए तां सभी सही है तां असें जो अपने घरै दा बीज जेह्ड़ा असें रखना चाहिदा कल मैं तो बोलता जिन्हें लोगों का अपना घरै दा बीज है ना तो तुम संभाली के रखा सहेजी के रखा है ना जी।
0: जी जी
1: आखिर
0: जी
1: देखिए पहले लोग धान बे होंगे तो एक पट्टी जरा लाल रंगे की होंगी ही है ना जी। ये दूजे किस्म का धाम हों कुछ कुछ दाना च क्या हों कि रोग प्रतिरोध क्षमता होंगी क्या रोगों ने लड़ने की शक्ति होंगी तो इस तरीके ने भी जो दान लगाते थे कन्नै कनक च भी तीन ही है तिखा है ना जी। अगर घरे का बीह होगा तो असें बड़ा स्वस्थ रहना कन्नै अपनी पहाड़ी की मिट्टी की खुशबू तो चाहनी
0: बिल्कुल
1: है ना
0: बिल्कुल
1: जी। तो अपने बीज जो पहाड़ा दे मत गोवा जलू अस छोटे छोटे थे स्कूले ते जलू घरें होंदे हे ना बड़का चाचू दी
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बरसाती दे पहले अजकल दिन होंदे तो लोगों के खीरे लगे होंदे हे घर च
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: असें
0: जी
1: खीरे जलू असा तोड़े के खाने तो ना खीरे का भी सुआद जो अजकल सानू नहीं मिलता क्योंकि भाई सारिया यही चीज़ों के बीज अहम बदली के रखी थी तो जरूर जो सा अपने अपने बीज जरा संभाली के रखने कहना असं जरूर थोड़े वास्ते एक जरा सा लोग गीतों का पिटारू जरा संभाली के रखे है ना जी।
0: सुन दे सारे रली मिलिए लोकगीत।
1: जी

0: इस लोकगीतें दे बाद किसान साथी असा सुननी एक जानकारी एक उन्नत किसान ने हुई हो गलबात तो ओ सुन दे गलबात।
1: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी च अज मिंजो कन्ने एक उन्नत किसान जुड़ा करदे हैं करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी। राम राम
1: जी। अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम दीप कुमार है।
1: हाँ जी।
2: कने घर छल में।
1: अच्छा।
2: कने ब्लॉक मेरा रात।
1: अच्छा तो दीप कुमार जी खेती बाड़ी कर दे ना।
2: हाँ जी कर दे।
1: कितनी की जमीन है तो हाँ वाल खेती करने वाली।
2: खेती करने हो जी हाँ जो लै 8-10 कनाली होनी है।
1: अच्छा जी। सारी बाई होंगी।
2: हाँ जी सारी बाई होंगी।
1: क्या क्या बन दे। अच्छा
2: बीच जी सब्जी भी लाते।
1: हाँ हाँ जी।
2: कुछ च अपने खाने जोगा गेहूं।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो जियां जिक्र करते जियां अहां दी पिछे जड़ी फसल निकली कणका दी।
2: हाँ जी।
1: कदे की फसल रही।
2: कणका ही फसल जी वधिया ही।
1: हाँ जी।
2: कने पहले तो थोड़ी ज्यादा पैदावार हुई है।
1: अच्छा तो दीप जी जड़े तुहां दे ए बीज वगैरह होंदे ना ए कौन बी बांधे तो हाँ अपने या फिर कोई उथे लांदे कुथी।
2: एक बारी लोंदे जी कने 2 साल बीज लेंदे।
1: अच्छा
2: रात
1: अच्छा
2: हाँ जी
1: हाँ जियां ऐसा मनदे भी हैं ना कहीं दू 3 साल बाद जो बीज बदलना चाहिए ना।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा अच्छा जियां गल करते हैं जियां खाद दी तो खाद कौन दे पांदे तो हाँ खेतरां च।
2: खाद जी जड़ा घरे दी हुंदी गोहा वगैरह स्याही पांदे जी।
1: अच्छा अच्छा दीप जी जियां जड़ा तुहां दा इलाका ने रशियालू।
2: हाँ जी।
1: इस इलाके च पानी दा क्या साधन है कियां खेती करदे तुहां सिंचाई।
2: पानी जी बरखा दा ही हुंदा सुना बरखा ही होवे तां ही खेती ज्यादा हुंदी।
1: अच्छा अच्छा कुल वगैरह नहीं लगती है ना।
2: कुल नहीं लगती।
1: बिजाई वगैरह कियां करदे ट्रैक्टर वगैरह।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम किसान बाणी हेतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया सुनील कुमार प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने ट्यालदे सदस्य बड़का चाचू
1: कने जोधा राम जुदी अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली, ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इस बीच आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और 3 राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
3: 26, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स पर आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्यूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
2: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के पास एक भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। मंडी से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का खोखला नारा देने वाली इस सरकार की जनविरोधी नीतियों और गलत फैसलों से समाज का हर वर्ग त्रस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही फ्री बिजली भी छीन ली है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर उसे राज्य सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के झूठे प्रचार प्रसार में लगा रही है, जबकि प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 15 जून तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
4: जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहाँ से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
2: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विनय कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते तेल व एलपीजी के मूल्यों ने देश को गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
5: जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे।
2: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत, कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा की।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।
0: ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम प्रसारण के 90 वर्ष इस विषय पर कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो का प्रसारण एक ऐसी विधा रही है जो आज से अगर 90 वर्ष पहले हम बात करें तो शायद उस जमाने में भी उस दौर में भी वही प्रासंगिकता उसकी उस वक्त भी रही होगी जो आज है। और इस विधा से जुड़े हुए जो विभिन्न लोग हैं, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रसारण से जुड़े हुए एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं। आकाशवाणी रेडियो प्रसारण में एक जो आईना जिसको कहा जाता है वो होता है आकाशवाणी का उद्घोषक। और उद्घोषक होने के साथ साथ यदि बहुमुखी उसमें प्रतिभा हो, जैसे गायन में भी अगर वो पारंगत है, नाट्य विधा में भी पारंगत है, तो शायद एक उद्घोषक के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ, शायद हमारे बहुत से श्रोता समझ भी गए होंगे जब मैं बहुत सी बातें यानी इस तरह से परिचय जब करवा रहा हूँ, तो शायद ये नाम अक्षर सिंह परमार ही हो सकता है, जिनका न केवल उद्घोषणाओं से बहुत गहरा नाता रहा, बहुत एक लंबा अनुभव रहा, हिमाचल के लोक संगीत से और नाट्य विधा से, मंचीय नाटक हो या रेडियो नाटक हो, आकाशवाणी के आप ए ग्रेड कलाकार हैं नाटक विधा में, बीहाई श्रेणी के कलाकार हैं लोक संगीत में भी। और आज जो अक्षर सिंह परमार के अनुभव रहे, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तमाम उन बातों को आज अपने श्रोताओं के साथ भी साझा करें कि ये एक व्यक्ति जो एक साधारण गांव से निकलकर शिमला में आए और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। परमार साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका स्वागत।
3: नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मेरा सब श्रोता साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे आपने आज यहाँ आने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूँ।
2: परमार जी, बचपन कहाँ बीता?
3: बचपन जी मेरा तहसील सरकाघाट, मेरा गाँव का नाम है बिद्रोही, और बिद्रोही गाँव लगभग रिवालसर से कोई 20 किलोमीटर आगे है, बहुत इंटीरियर का गांव है। वहां से मैंने मिडिल किया
2: जी।
3: उसके बाद फिर मेरी सारी पढ़ाई बिलासपुर में हुई, ग्रेजुएशन तक। तो उस दौरान क्या था कि जब मैं बचपन में अपने गांव में रहता था तो हमारे यहाँ भी लोक संगीत की और लोक नाट्य की परंपरा रही है, जो मैं देखता रहा
2: जी,
3: ध्यान से देखता रहा। और उसके बाद जब मैं बिलासपुर आ गया तो थोड़ा मेरा सर्कल बढ़ गया, तो उसमें अब बिलासपुर का जैसे लोक नाट्य ढाजा, उसको मुझे ध्यान से देखने का भी मौका मिला। फिर जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ दूसरे लोगों से जब परिचय होता है, तो क्योंकि मेरा जो झुकाव था शुरू से ही वो लोक नाट्य और लोक संगीत की तरफ था, तो फिर मुझे वहाँ भी कुछ ऐसे दिग्गज लोग मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित भी किया और शिक्षण प्रशिक्षण भी हुआ।
2: तो रेडियो की तरफ कैसे रुझान हुआ? और क्योंकि बचपन में तो जब आपका दौर रहा होगा
3: जी
2: का, तो उस वक्त तो रेडियो ही रेडियो था, और तो कोई दूसरी विधा शायद यही लोक नाट्य की जो आपने बात की
3: जी,
2: या
3: जी।
2: कोई लोक संगीत की सभाएं या कोई मेले त्योहार वगैरह में जो हमारे कुछ संगीत सभाएं होती थी वो होता था मनोरंजन का
3: जी जी।
2: लेकिन रेडियो का जो एक स्तर था उस दौर में क्या?
3: देखिए जी, स्कूल टाइम से ही मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था नाटक और संगीत में, चाहे वो मंची होता था, तब रेडियो तक तो हमारी पहुंची ही नहीं थी, तो हम मंची या फिर जैसे यूथ फेस्टिवल होने या कोई और उत्सव होने उनमें भाग लेना। तो ये बात है मेरे ख्याल 70 की बात है
2: जी,
3: तब मैं कॉलेज में था, तो एक फंक्शन हुआ तो हमारे यहीं बिलासपुर से हमारे एक सीनियर कोलीग थे शांति स्वरूप गौतम जी, वो उस फंक्शन को कवर करने गए हुए थे, वो मेरा एक गीत रिकॉर्ड करके ले आए
2: जी।
3: तब जहां आज इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, उन दिनों ये स्टूडियो नहीं था, तो उन्होंने वो डिस्प्ले किया इधर, जब जो म्यूजिक के ख्याता लोग थे कि जी एक लड़का ऐसा भी है कॉलेज में जो गाता है, तो मुझे बिना किसी स्वर परीक्षा के ही आमंत्रित कर दिया गया
2: जी
3: लोक संगीत के लिए। फिर वो मेरी शुरुआत थी।
2: आपने कहा कि उस दौर में स्टूडियो यहाँ नहीं था?
3: यहाँ नहीं था जी।
2: तो कहाँ था?
3: चैम्बर काउंसिल में था, उसको चैम्बर काउंसिल बोलते थे, जो विधानसभा है
2: वर्तमान में विधानसभा।
3: हाँ जी, जो वर्तमान में, उस वक्त भी विधानसभा थी वो
2: जी
3: लेकिन उसका एक जो ग्राउंड फ्लोर है वो आकाशवाणी को, तो उसके 2-3-4 कमरे दे दिए गए थे। तो उसके एक तो मेन गेट है
2: जी,
3: एक ऊपर की तरफ से मेन गेट है जहां से हमारे गवर्नर साहब तशरीफ लाते हैं
2: जी,
3: एक नीचे की तरफ से भी गेट है जो माल रोड वाली सड़क है उसकी तरफ से भी एक गेट है, वो हमारा सीढ़ियां होती थी। तो वहां पर अंदर छोटा एक स्टूडियो था, स्टाफ भी बहुत कम था। तो वहां से फिर मेरी शुरुआत 71 में वो सारा एपिसोड हुआ। फिर क्या हुआ, जब हिमाचल डे सेलिब्रेशन हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी आई
2: जी
3: यहाँ पर 71 में, 25 जनवरी 71 को, तो हमारी टीम जो थी अपने फोक डांस की और म्यूजिक की, ग्रुप सॉन्ग की, वो बिलासपुर कॉलेज से यहाँ भेजी गई
2: जी।
3: तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ गिर गई बर्फ बहुत ज्यादा, 100 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर भी उसी दिन 25 जनवरी को ही लॉन्च हुआ
2: जी,
3: तो बर्फ इतनी ज्यादा गिर गई कि हम यहाँ हेल्डअप हो गए। अच्छा, जब क्योंकि अब 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर तो लग गया लेकिन अंदर बजाने के लिए कुछ भी नहीं था बहुत ज्यादा
2: जी,
3: तो इन्होंने क्या किया,
2: रिकॉर्डिंग्स उस वक्त नहीं शुरू हुई थी बहुत ज्यादा।
3: हाँ जी हाँ जी,
2: जी
3: तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप्स आए हुए थे वो इन्होंने स्टूडियो बुलाए, क्योंकि हम हेल्ड अप हो गए यहाँ 4-5 दिनों के लिए बर्फ की वजह से। तो वो ग्रुप इन्होंने यहाँ आकाशवाणी, जो मैं बता रहा था आपको, काउंसिल चैम्बर विधानसभा वाला जो स्टूडियो था उसमें रिकॉर्डिंग हुई और काफी अच्छी रिकॉर्डिंग रही वो। तो उसके बाद फिर मैं लगातार आकाशवाणी से जुड़ गया, तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई और साथ साथ में ग्रेजुएशन तक 2-3 बार 4 बार लोक संगीत गाने के लिए भी आता रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ इसमें लॉ में मैंने एडमिशन लिया तो मेरा रुझान क्योंकि नाटकों की तरफ बहुत था, इन बिटवीन मैं एक दो बार तो मैं बेस्ट एक्टर भी रहा इंटर यूनिवर्सिटी में
2: जी
3: स्टे का। तो जब मैं शिमला आया तो मेरा रुझान थोड़ा झुकाव नाटक की तरफ ही हुआ, तो मेरा अप्रूवल एज नाटक कलाकार भी यहां से आकाशवाणी शिमला से हो गया। फिर मेरा कार्यक्रम चलता रहा जी आगे, लेकिन मैं अब बात चली है तो मैं थोड़ा सा ये निवेदन करूं कि जो अधिकारी लोग थे या जो इंचार्ज लोग थे वो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड थे
2: जी।
3: अब जैसे एजुकेशन का हमारा एक सेक्शन है, उसमें केवल वही लोग अधिकारी बनते थे जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, MEd हो, BEd हो, टीचर रहे हों। तो इस तरह से म्यूजिक का भी ऐसा ही था, तो वो लोग बहुत सूझबूझ से, और मतलब यह परफॉर्मेंस तो अलग चीज थी लेकिन एक क्लास भी थी, सीखने और सिखाने का काम भी बहुत पक्के तौर पर होता था। तो उसके बाद जी फिर मेरा कार्यक्रम चलता रहा, उसमें भी मुझे मेरा शौक बढ़ता रहा, हालांकि मेरा ट्रेड यहाँ ज्वाइन करने का नहीं था, मैं जाना चाहता था नेवी में। नेवी का मैंने कॉलेज टाइम का NCC का B सर्टिफिकेट किया था, C सर्टिफिकेट मैंने करना था और सीधा कमीशन जाना था
2: जी,
3: लेकिन भाग्य की बात यह है, ये समझिए कि वो फिर हाथ की लकीरों का भी और माथे की लकीरों का भी असर होता है, तो मेरा रुझान इस तरफ बढ़ गया और फिर मैं कैजुअल अनाउंसर भी यहाँ अपॉइंट हो गया कैजुअली। तो जब पोस्टें यहाँ पर एज अनाउंसर आई, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया लेवल का कॉन्टेस्ट होता है
2: जी,
3: काफी लोग आए थे जब यहाँ हमारी वो प्रतिस्पर्धा हुई इसकी अनाउंसर की, तो तब फिर मैं सिलेक्शन हो गई
2: जी। तो जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, जैसे आपने कहा कि शुरुआती दौर में तो मंचीय प्रदर्शन होते थे,
3: हाँ जी,
2: और उसके बाद एक रेडियो आर्टिस्ट बन जाना, तो उन दोनों में कुछ आपको फर्क महसूस हुआ कि अब मैं रेडियो पर नाटक भी कर रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, उद्घोषणाएं भी कर रहा हूँ, तो इन दोनों में कुछ फर्क आपको लगा?
3: डॉक्टर शर्मा, मैं आपको बात बताऊं कि रेडियो मैं जब मैं आ गया तो मुझे अपने मंचीय गतिविधियों से थोड़ा सा हटना पड़ा। कारण ये था कि हमारी दिन रात की, आपको तो पता ही है, दिन रात की ड्यूटी, फिर रिहर्सल भी, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है ना मंच के कार्यक्रम के लिए, तो वो मेरे से थोड़ा सा छूट गया वो पक्ष। लेकिन हालांकि मैंने उसमें भी, चाहे वो हमारी भाषा अकादमी का प्रोजेक्ट था या कोई और प्रोजेक्ट थे, उनमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मंच पर भी। फिर तो रेडियो का तो जब ये सोच लिया कि अब जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, तो फिर तो मैं एक विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी हूँ, आज भी हूँ, और मुझे अब भी कोई सीखने की अगर कोई चीज मेरी नजर से गुजरती है तो मैं उसको पकड़ने के बगैर छोड़ता नहीं।
2: तो जब आप रेडियो से बाहर निकलते थे, हाँ, कभी मेलों वगैरह पे जाना होता था, वहां परफॉर्म करना होता था, तो लोग किस तरह से आपसे मिलते थे कि ये वही है जो रेडियो में अक्षर सिंह परमार आते हैं, जो गाते हैं?
3: नहीं, थोड़ा हैरानी से पेश आते थे, अच्छा ये है वो,
2: जी जी।
3: तो मैं सोचता था भी शायद मेरे कोई, जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ या जो प्रशिक्षण चला हुआ है, जो मेरा सीखने सिखाने का जो मेरा काम चला हुआ है, वो शायद थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आता हो।
2: तो जब आप शुरुआती दौर में रेडियो में आए तो कैसा था रेडियो का वो दौर?
3: हाँ,
2: लोगों में,
3: हाँ मैं बताता हूँ आपको, पहले तो मैनुअल होता था, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। हालांकि जब मैं आया

0: तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले के जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बड़ी बड़ी डिस्कें दिखाते थे, बड़े बड़े तवे जिसको हम बोलते थे, तो
1: जी
0: वो स्टूडियो में उनको रिकॉर्ड किया जाता था, बाकी रिकॉर्डिंग का कोई प्रावधान था ही नहीं, सब आमने सामने बैठ
1: लाइव
0: के।
1: होता था,
0: हाँ जी,
1: मतलब
0: लाइव,
1: सजीव प्रसारण है।
0: टोटल लाइव। उसके बाद जब मैं आया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, टेप थे हमारे पास, आधे घंटे का भी था, घंटे का भी था, तो उस पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी, मशीनें इंस्टॉल हो चुकी थी। उसके बाद देखते ही देखते फिर तो, अब तो देखिए आप क्या क्या हो गया,
1: जी
0: अब तो कंप्यूटर आ गया, डिजिटल आ गया, सीडीज बन गई, सीडीज का दौर हुआ शुरू टेप के बाद,
1: जी
0: और उसके बाद फिर अब तो कंप्यूटर पर सारा कुछ लोड कर सकते हैं आप,
1: जी
0: एक बटन दबाओ तो पूरा कंप्यूटर आपको बता देगा इस मेरे पेट पे
1: जी
0: क्या है।
1: अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है।
0: हाँ जी,
1: तो परमार साहब, जब आप बहुत छोटे थे तो
0: हाँ
1: अब
0: जी,
1: रेडियो सुनना कब से शुरू किया आपने?
0: रेडियो जी, हमारे तो बहुत लेट रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ गांव में, मतलब मैं उस वक्त कोई 10-12 साल का रहा हूँगा जी,
1: जी
0: इससे पहले मैंने रेडियो नहीं सुना था। हमारे एक फौज में भाई थे, सूबेदार थे, वो कांगो की लड़ाई लड़के आए थे,
1: जी
0: तो वहां से वो एक रेडियो लाए थे ट्रांजिस्टर, तो वो जब घर में बजना शुरू हुआ तब हमने सोचना यार ये कमाल है, देखो ये इतना सा बक्सा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो तब से फिर हैरानी जैसी थोड़ी शुरू हुई। तो खैर फिर धीरे धीरे, तो फिर जब मैं वहां से निकल आया, फिर तो मैं बिलासपुर जब आ गया, तो फिर तो कोई ऐसी अचंभे वाली बात ही नहीं थी हमारे लिए।
1: जी तो अगर हम माने तो लगभग 65-70 साल पहले आपने रेडियो सुनना शुरू कर दिया
0: हाँ
1: था,
0: जी,
1: और कहें तो उस दौरान तो एक रेडियो की, एक शिशु काल ही था रेडियो का, एक हम कहें कि शुरुआती दौर ही
0: हाँ
1: था।
0: जी, हाँ
1: जब
0: जी,
1: हम 90 साल की
0: हाँ
1: बात
0: हाँ
1: कर
0: हाँ
1: रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी,
1: कि 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं प्रसारण के,
0: हाँ जी,
1: तो फिर आपने अनुभव ये भी बताया कि एक जो रेडियो का जो कलाकार होता था ना
0: जी
1: पुराने दौर में,
0: जी
1: उसको एक अलग नजरिए से देखते थे लोग। वो सोचते थे कि यार ये रेडियो में बोलते हैं, रेडियो में
0: पहले
1: गाते हैं।
0: डॉक्टर शर्मा, पहली बात तो ये थी कि इसका नाम था आकाशवाणी,
1: जी
0: इसको धरती की वस्तु ही नहीं माना जाता था, जो हम कुछ बोलते थे या सुनते थे, ये तो ऐसा लगता है आकाश से कोई बात हो रही है, तो वो फिर वो तो थी भी बात सच्ची, अब वो तो हवाई मार्ग से ही होता था प्रसारण।
1: जी
0: तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की जो लर्निंग हुई उसमें, हमारे जो न्यूज़ रीडर थे हिंदी के खासकर, जैसे देवकीनंदन पांडे जी, तो अगर हम किसी शब्द पर अड़ जाते थे, फंस जाते थे, तो हम सोचते थे पांडे जी तो न्यूज़ पढ़ेंगे तब वो कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो
1: जी
0: उनसे सीख लेंगे भी कैसे बोलते हैं, मतलब लर्निंग की मैं बात बता रहा हूँ कि कितनी पर्टिकुलर खास तौर पर एक नपीतुली एक मेंटेलिटी होती है, मतलब एक भावना होती है कि कोई चीज़ छूटे ना सीखने से।
1: जी
0: तो बस फिर आप साथी भी जुड़ गए बीच में, तो मेरा कोशिश ये रही कि हाँ यहाँ मुझे थोड़ा सा कहते हुए अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ी मैं ये कमी भी महसूस करता रहा कि मैंने आकाशवाणी से सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गाया, बाकी जो विधाएं यहाँ पर चाहिए होती हैं वो मैंने सब।
1: जी और एक दौर वो भी तो था ना कि रेडियो की, जो जैसे आपने अभी देवकीनंदन पांडे जी की बात की,
0: जी,
1: या ब्रॉडकास्टिंग में और भी बहुत से
0: बहुत से
1: धुरंधर
0: लोग,
1: लोग हुए
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ बिल्कुल,
1: और जिनको सुनकर हम अपनी भाषा का सुधार करते थे, एक वो
0: हाँ
1: दौर भी तो था ना।
0: वो ये, मैं वही तो कह रहा हूं कि हम लर्निंग बहुत थी, मैं नहीं समझता आज कितनी लर्निंग हम दे सकते या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या शब्दों का चयन कैसे करना है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों के लिए बहुत संभल के बोलने की आवश्यकता होती है, थी तो
1: जी
0: थी पर है भी। तो मैं तो आज भी यही कहूंगा कि 90 साल के इस सफर में अगर हम आज भी अपने लर्निंग को बरकरार रखें, जो खासकर जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं रेडियो से, क्योंकि जो हमारी आज जो भाषाई दृष्टिकोण है
1: जी
0: वो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया हुआ है कि अगर हम बोलने के लिए ही प्रयत्न करें, कितने तो डॉक्टर शर्मा टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, और अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी कदर होती है,
1: जी
0: तब आपको कोई ऐसा दरकिनार नहीं कर सकता किसी भी। हाँ ये है कि जिस भाषा को हम अपनाएं उस भाषा के प्रति हम समर्पित रहें, उच्चारण के प्रति समर्पित रहें, उसके उतार चढ़ाव के, उसके ठहराव पे हम कितना काम कर सकते हैं वो जरूर ध्यान रखना चाहिए।
1: हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे जो रेडियो प्रसारण, और स्पेशली हम आकाशवाणी शिमला की बात करेंगे,
0: जी
1: क्या योगदान रहा लोगों के मनोरंजन की बात हो या सूचनाओं की बात हो, ओवरऑल एक रेडियो का जो प्रसारण रहा है आकाशवाणी शिमला का?
0: देखिए जी, मैं बताऊंगा आपको कि आकाशवाणी शिमला ने इतना बड़ा काम किया है, ये हमारे दूसरे स्टेशन तो बड़ी देर से खुले, जैसे धर्मशाला है, हमीरपुर है, रिकांगपियो रिले करता है शिमला को, कुल्लू रिले करता है, लेकिन जो अब नेटवर्क हमारा इस वक्त काम कर रहा है, वो मुझे तो हैरानी होती है कि आज भी मुझे लोग मिलते हैं, तो चाहे वो किन्नौर के रहने वाले हों चाहे कहीं के भी हों, तो वो रेफरेंस देते हैं बाकायदा कि ये बात हमने रेडियो से सुनी है। तो इसका मतलब कि रेडियो अब भी, उसकी भी अब वही अहमियत है, खासकर हमारे दूर दराज क्षेत्रों में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये आगे भी बढ़ना चाहिए, खासकर मनोरंजन और सूचना का जो हमारा काम है उस पर तो कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए।
1: जी अच्छा सिंह परमार जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आए और आपने तमाम जो आपके अनुभव रहे रेडियो के साथ आपने हमारे श्रोताओं से साझा किए। आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, आपने मुझे मौका दिया तो मैं आया, धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री अक्षर सिंह परमार से भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर हुकम शर्मा। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी गीत।

अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

देशकान इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज आपने सुने कोई मिल गया फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए मस्ती फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना मस्ती फिल्म का यह गीत। शब्द रचना थी समीर की, संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने और इस गीत को गाया था गायत्री अय्यर, स्नेहा पंत और मेघना ओबेरॉय ने। फिल्म संगीत आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म से यह गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण व साथियों की।

अभी आपने सुना बेटा फिल्म से यह गीत। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण व साथियों की। शब्द रचना समीर की थी और संगीतबद्ध किया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। फिल्म संगीत आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गर्व द प्राइड फिल्म से।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाया ये गीत, और इस गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने, फिल्म संगीत। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं 103.4 MHz पर आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति दयावान फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति अलका याग्निक की आवाज़ों में।

फिल्म संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म कोई मेरे दिल में है।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण के युगल स्वरों में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कुछ गीत नई फिल्मों से। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं भेजा फ्राई फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना भेजा फ्राई फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था गजेंद्र वर्मा व साथियों ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हेर स्टोरी 3 से।

अभी आपने सुना हेट स्टोरी 3 से ये गीत, जिसे गाया था अरमान मलिक ने। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया था बमन ने। नई फिल्मों से कुछ गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था मनोज तिवारी ने। शब्द रचना थी वरुण ग्रोवर की और संगीत दिया था स्नेहा खानवलकर ने। नई फिल्मों से कुछ गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं स्त्री फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना स्त्री फिल्म से यह गीत जिसे गाया था मीका सिंह व साथियों ने, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना हम तुम और शवाना फिल्म से यह गीत। गायक कलाकार थे सुजैन डी मेलो, मीका सिंह व साथी। शब्द रचना समीर की थी और संगीत दिया था सचिन जिगर ने। नई फिल्मों से कुछ गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जॉली LLV 2 फिल्म से।

इस गीत को लिखा है मंच ने और गायक कलाकार हैं निंदी कौर, रफ्तार और मंच मुसिक।

चार्ली एलएलबी 2 के इसी गीत के साथ हमारा आज का नई फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम अब यहाँ संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से कुछ गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशदीप फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना आकाशदीप फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी व साथियों ने।

पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति संजोग फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की युगल स्वरों में।

अभी आपने सुना संयोग फिल्म का यह गीत जिसे गाया था किशोर कुमार आशा भोसले ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चाइना टाउन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी व साथियों की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी व साथियों की आवाज़ों में गाया चाइना टाउन फिल्म का यह गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं चोर मचाए शोर फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में गाया चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं त्रिशूल फिल्म का ये गीत, येसुदास लता मंगेशकर और किशोर कुमार के मिलीजुले स्वरों में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर

0: आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. He emphasized that India must adopt new strategies to address cyber threats, hybrid warfare and drone-based challenges. Short-range ballistic missile Agni-1 was successfully test-launched from the integrated test range at Chandipur, Odisha today. Ministry of Defence said that the launch validated all operational and technical parameters. The test was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful launch marks another milestone in India's strategic defense preparedness and reinforces the credibility of the country's minimum credible deterrence capability. Agni-1 is a short-range surface-to-surface ballistic missile developed indigenously as part of India's strategic missile program. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है।